नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वाग रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम 9 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य, संस्कृति और त्योहार को लेकर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बता ही रही हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच। आप कहिए, हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा आपकी फरमाइश, सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश, आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप ऐसे मिस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहां आपकी आवाज है सबसे खास। तो साथियों, ये थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है ना? तनिक लौटिए अपने बचपन में,

भिन्न होती तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूमने लगता है, और जब आप असफल होते हैं तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए, ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले, हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर ले। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके, हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें। इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आपके

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा अमरा हित भाई बुनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हम रे रहो आपणो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मन स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनो अमे अमारे टेम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाते। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नु विषय है कि आपणे मिश्रित खेती नु हूँ महत्व है ने आ खेती आपणे हेते करी शका। तो आना विषय माते भाईन बुनो अमारी आप तकी कार्यक्रम में घणा कनी वाते थाएंगा, पण कार्यक्रम शुरू करा इने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते। तो भाईन बुनो आप हमरता रेजू आपड़ू रेडियो आपड़ी वाते वागर रेडियो 90.8 FM माते।

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन तकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज मुहे बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज तकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आस है सेहत नु असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, बचपन जीवन का सबसे कोमल, सबसे सुंदर और सबसे सीखने वाला दौर होता है।
0: बिल्कुल,
1: इसी उम्र में कशिश बच्चे अपने व्यक्तित्व की नींव रखते हैं, रिश्तों को समझते हैं और दुनिया को देखने का नजरिया विकसित करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन आज के समय में एक ऐसी समस्या तेजी से बढ़ रही है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। वह समस्या है बच्चों का अपनी परेशानी किसी से न बताना और जरूरत पड़ने पर भी मदद मांगने में झिझकना।
0: बिल्कुल,
1: कई बार माता पिता कहते हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई और हमारे बच्चे ने हमें बताया तक नहीं। स्कूल में बच्चा किसी परेशानी से जूझ रहा होता है, कोई उसे तंग कर रहा होता है या कई बार पढ़ाई में कठिनाई आती है तो कोई डर उसके मन में बैठ जाता है या वह मानसिक तनाव महसूस करता है, लेकिन वह चुप रहता है। जब तक परिवार को सच्चाई पता नहीं चलती तब तक समस्या काफी बढ़ चुकी होती है।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि बच्चों को मदद मांगने में झिझक क्यों होती है और इसे कैसे दूर करें।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी हम करेंगे हमारे श्रोता साथियों से आगे कार्यक्रम में, लेकिन जैसा कि शुरुआत में भी गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना पहले उसी दस्तूर को निभाते हुए यहाँ पर मनोरंजन किया जाए।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: करते हैं। और जैसा कि आपने बताया था कि बच्चे कई ऐसी चीजें हैं जो माता पिता को डर के कारण नहीं बता पाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों ये जो चुप्पी है वो केवल एक आदत नहीं है, बल्कि कई बार ये बच्चे के मन में बैठे डर, असुरक्षा और विश्वास की कमी का संकेत होती है।
1: जी जी।
0: इसलिए श्रोता साथियों, हम सभी माता पिता को ये समझना होगा कि बच्चे मदद क्यों नहीं मांगते। हम उन्हें ऐसा भरोसा कैसे दें कि वे हर मुश्किल में सबसे पहले अपने माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद बड़े के पास आकर अपनी बात कहे।
1: बिल्कुल कशिश, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बच्चा कभी भी बिना कारण चुप नहीं रहता। उसके मन में कोई ना कोई डर जरूर होता है। कई बच्चों को लगता है कि यदि उन्होंने अपनी गलती बता दी तो उन्हें डांट पड़ेगी। कुछ बच्चों को डर तो होता है कि उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा।
0: बिल्कुल।
1: कई बच्चों को यह चिंता रहती है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें कमजोर समझेंगे, और यही डर कशिश धीरे धीरे उनके मन में बैठ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: वे अपनी समस्याओं को अपने भीतर ही दबाकर रखने लगते हैं। कई बार इस झिझक की शुरुआत घर से होती है। यदि बच्चा कोई छोटी सी गलती बताता है और उसे तुरंत डांट, सजा और अपमान मिलता है कशिश, तो अगली बार वह सच बताने से पहले कई बार सोचेगा।
0: बिल्कुल।
1: यदि बच्चा रोते हुए अपनी परेशानी लेकर आता है और उसे यह सुनने को मिलता है कि इतनी सी बात पर रो रहे हो, ये तुम्हारी ही गलती होगी, तो इसका असर उसके विश्वास को धीरे धीरे कम कर देता है।
0: जी जी।
1: उसे लगता है कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथ ही अगर बात करें तो ऐसे में श्रोता साथियों, हमें ये याद रखना होगा कि बच्चे का विश्वास एक दिन में नहीं बनता है, ये रोज रोज के व्यवहार से बनेगा। जब माता पिता अंजलि जी उसकी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनेंगे, उसकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और बिना डांटे उसकी बात समझने की कोशिश करेंगे, तभी बच्चा यह महसूस करेगा कि वह अपनी हर परेशानी किसी से साझा कर सकता है।
1: जी हाँ।
0: जैसा कि अंजलि जी, आज का समय पहले से बिल्कुल अलग है। बच्चों की समस्याएं भी बदल चुकी हैं। पहले डर केवल स्कूल या मोहल्ले तक सीमित था, लेकिन आज मोबाइल और इंटरनेट के कारण बच्चों के सामने नई चुनौतियां देखने को मिल रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: कई बच्चे ऑनलाइन परेशान किए जाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल में बुलिंग का शिकार होते हैं, तो कुछ पढ़ाई के दबाव से तनाव में रहते हैं साथियों।
1: जी हाँ।
0: ऐसे समय में बच्चा चुप रह जाए तो समस्या और गंभीर हो सकती है। इसलिए परिवार का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चा बिना डर अपनी बात कह सके। साथियों,
1: जी बिल्कुल।
0: घर में आप ऐसा माहौल बनाएं जहाँ रोज कुछ समय केवल बच्चों के लिए हो। उनसे श्रोता साथियों ये मत पूछिए कि आज तुम्हारे कितने नंबर आए, बल्कि ये पूछिए कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है, क्या आज कुछ ऐसा हुआ जिससे तुम खुश या दुखी हुए हो। अंजलि जी, ऐसे जो छोटे छोटे सवाल हैं वो बच्चों के मन का दरवाजा खोल देते हैं और बच्चे अपने मन की बात अपने माता पिता को ठीक ढंग से बता पाते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है। ये बातें आगे निरंतर यूं ही श्रोता साथियों के साथ अवश्य बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही कशिश श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि माता पिता को यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान केवल सलाह देना नहीं होता। कई बार बच्चे को केवल एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो बिना टोके उसकी पूरी बात सुन ले। जब बच्चा महसूस करता है कशिश की उसकी बात को गंभीरता से लिया जा रहा है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह भविष्य में भी खुलकर बात करने लगता है। शिक्षकों की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल केवल श्रोता साथियों पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र भी है। यदि शिक्षक ऐसा वातावरण बनाए जहां बच्चे बिना डर के प्रश्न पूछ सके, अपनी गलती स्वीकार कर सके, अपनी परेशानी साझा कर सके, तो बच्चे मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: किसी बच्चे की गलती पर पूरी कक्षा के सामने उसका मजाक उड़ाना या उसे अपमानित करना उसके भविष्य को गहरी चोट पहुंचा सकता है। इसके बजाय उसे अलग से समझाना और प्रोत्साहित करना बहुत ज्यादा प्रभावी होता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, अब यही अगर बात करें साथियों तो हमें बच्चों को यह सिखाना होगा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी होती है। अंजलि जी, जैसे बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाना सामान्य बात है, ठीक वैसे ही किसी परेशानी में माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद बड़े से सलाह लेना भी सामान्य बात है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जो बच्चा सही समय पर मदद मांगना सीख जाता है वह जीवन की बड़ी समस्याओं का सामना भी अधिक समझदारी से कर पाता है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें यह महसूस कराना है कि चाहे परिस्थितियां जैसे भी हो, उनका परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा है।
0: जी हाँ,
1: यदि बच्चा गलती करता है तो केवल उसकी गलती मत बताइए साथियों, बल्कि उसे यह भी बताइए कि गलती सुधारने का रास्ता क्या है। यदि बच्चा डर कर अपनी बात छिपा लेता है तो उसे दोष देने के बजाय ये सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे सच बोलने का सुरक्षित माहौल ही नहीं मिल रहा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अंजलि जी, बच्चे जन्म से निडर या डरपोक नहीं होते। उनका आत्मविश्वास, उनका साहस और उनकी खुलकर बात करने की आदत परिवार, स्कूल और समाज के वातावरण से विकसित होती है।
0: जी हाँ,
1: यदि श्रोता साथियों हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी समस्याएं छिपाने के बजाय समय पर उन्हें साझा करें, तो हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां उन्हें डर नहीं भरोसा मिले, निर्णय नहीं समझ मिले और डांट नहीं बल्कि संवाद मिले।
0: बिल्कुल कशिश, हमें ये भी याद रखना होगा कि जिस बच्चे को यह विश्वास होता है कि मेरे अपने मेरी बात सुनेंगे, वही बच्चा जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही समय पर मदद मांगने का साहस जुटा पाता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए बच्चों को केवल मजबूत बनने की सीख मत दीजिए बल्कि उन्हें यह भी सिखाइए श्रोता साथियों कि जरूरत पड़ने पर मदद मांगना भी ताकत की पहचान है, कमजोरी की नहीं। हम ऐसा बचपन बनाएं जहां बच्चों के मन में डर नहीं विश्वास हो, चुप्पी नहीं संवाद हो और अकेलापन नहीं अपने अपनों का साथ हो।
1: बिल्कुल,
0: यही एक सुरक्षित, आत्मविश्वासी और खुशहाल बचपन की सबसे मजबूत नींव है।
1: जी हाँ,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हर बच्चा अपने मन में अनेक भावनाएं, सवाल और उलझने लेकर बड़ा होता है। कई बार वह अपने परेशानियों को शब्दों में नहीं कह पाता, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी चुप्पी और उसके चेहरे के भाव बहुत कुछ कह देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम इन संकेतों को समय रहते समझ लें तो कई बड़ी समस्याओं को शुरुआत में ही रोका जा सकता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए बच्चों की बात केवल सुनना ही नहीं बल्कि उसे समझना भी उतना ही आवश्यक है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे साथियों से यही कहना चाहेंगे कि साथियों, बच्चों को सबसे बड़ा उपहार महंगे खिलौने या सुविधाएं नहीं बल्कि ऐसा विश्वास देना होता है कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने मन की बात बिना डर के निडर होकर कह सके।
0: जी जी,
1: जब बच्चों के मन के दरवाजे संवाद से खुलते हैं ना अंजलि जी, तभी उनके जीवन के रास्ते भी आत्मविश्वास, सुरक्षा और सफलता की ओर खुलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में श्रोता साथियों, हम हर बच्चे के जीवन में ऐसे भरोसे का दीप जलाएं जो उसे हर अंधेरे में सही रास्ता दिखाता रहे।
0: बिल्कुल, तो कशिश, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत हो गई है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन और हमारी बातें अब यही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार।

भाई ने बोनो घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि नौकरी के साथ साथ हुनर क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, जब भी हम किसी युवा से उसके सपने के बारे में पूछते हैं कशिश, तो अक्सर जवाब मिलता है मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, नौकरी जीवन को स्थिरता देती है, सम्मान देती है और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। लेकिन क्या केवल नौकरी ही सफलता की अंतिम मंजिल है? आज का दौर तेजी से बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और रोजगार की दुनिया भी लगातार नई चुनौतियां लेकर सामने आ रही है कशिश। ऐसे समय में श्रोताओं, केवल नौकरी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं रह गया।
0: बिल्कुल,
1: आज जरूरत है कि हम अपने भीतर ऐसे कौशल विकसित करें जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति दे।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में जैसा कि मनोरंजन करना हमारे श्रोता साथियों को बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना इसी गीत के साथ पहले दोस्तों को मनोरंजन करवाएं हम।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है, बात कर रहे हैं नौकरी के साथ साथ हुनर क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, एक सवाल के साथ अगर बातचीत की शुरुआत करें तो अगर आज आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाए तो क्या इसका मतलब आपका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है साथियों? शायद अगर जागृति जी ये सवाल जो है वो हमारे श्रोता साथियों को कुछ साल पहले पूछा जाता तो इसका जवाब हाँ होता।
1: जी हाँ,
0: लेकिन आज का समय बदल चुका है। आज दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, कई ऐसी नौकरियां जिनकी आज बहुत मांग है और आने वाले कुछ वर्षों में ये भी बदल सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथियों, नई तकनीकें आ रही हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई कामों का तरीका बदल रहे हैं। ऐसे में सिर्फ नौकरी होना काफी नहीं है, बल्कि अपने आप को लगातार बेहतर बनाना और नए नए हुनर सीखना भी उतना ही जरूरी हो चुका है। जागृति जी।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि हुनर का मतलब केवल कोई तकनीकी काम सीख लेना है, लेकिन वास्तव में हुनर का दायरा बहुत बड़ा है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा संवाद करना, सही समय का उपयोग करना, समस्याओं का समाधान ढूंढना, नेतृत्व करना, नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना, रचनात्मक सोच रखना और टीम के साथ मिलकर काम करना, ये सारी बातें हुनर में आती है।
0: जी हाँ,
1: कई बार हम देखते हैं कशिश कि दो लोगों के पास समान डिग्री होती है, लेकिन सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जिसके पास बेहतर कौशल होता है।
0: बिल्कुल।
1: यही कौशल व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान दिलाता है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हम हुनर शब्द को सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में सिलाई, मोबाइल रिपेयरिंग या कोई तकनीक का काम दिमाग में आता है। लेकिन श्रोता साथियों, हमारे लिए क्या ये सिर्फ हुनर है? बिल्कुल नहीं। हुनर श्रोता साथियों वह क्षमता होती है जो किसी व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है, जैसे कि अच्छा संवाद करना, समय पर काम को पूरा करना, टीम के साथ मिलकर काम करना, नई नई चीजें सीख लेना और मुश्किल परिस्थिति में शांत रहकर समाधान निकालना।
1: जी हाँ,
0: ये सभी श्रोता साथियों हुनर कहलाते हैं। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि डिग्री आपके ज्ञान का प्रमाण दे सकती है, लेकिन हुनर आपके व्यक्तित्व की पहचान बनाता है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ कशिश हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि दुनिया में कोई भी नौकरी हमेशा के लिए सुनिश्चित नहीं होती है।
0: बिल्कुल,
1: कभी आर्थिक परिस्थितियां बदल जाती है, कभी तकनीक बदल जाती है और कभी संस्थाएं अपने काम करने का तरीका बदल देती है। लेकिन याद रखिए श्रोताओं, हमारे पास कौशल है तो अवसरों की कमी नहीं रहती। हुनर ऐसा साथी है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है।
0: बिल्कुल,
1: वो हमें नई नौकरी दिला सकता है, अपना व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा दे सकता है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की ताकत भी दे सकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि आज लाखों युवा पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, कई लोगों के पास तो अच्छी डिग्रियां भी हैं जागृति जी, फिर भी सभी को मनचाही नौकरी क्यों नहीं मिलती?
1: बिल्कुल,
0: इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों स्किल गैप, यानी कि शिक्षा और व्यवहारिक कौशल के बीच का अंतर। जागृति जी, आज कई कंपनियां ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो केवल किताबों का ज्ञान न रखते हो बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में भी काम कर सके।
1: बिल्कुल,
0: वे देखते हैं श्रोता साथियों कि कोई उम्मीदवार टीम में काम कर सकता है या नहीं, वह नई नई चीजों को जल्दी सीख पाता है या नहीं, उनमें आत्मविश्वास कैसा होता है। और इसी कारण से जागृति जी, आज इंटरव्यू में केवल अंक नहीं बल्कि हमारा व्यवहार, हमारी सोच और हमारा कौशल भी देखा जाता है।
1: जी हाँ कशिश, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, हम बात कर रहे हैं कि नौकरी के साथ साथ हुनर क्यों जरूरी है, तो बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी कि नौकरी के साथ साथ हुनर क्यों जरूरी है। गीत से पहले हमने जाना था हुनर आखिर क्या है, केवल डिग्री क्यों पर्याप्त नहीं है, नौकरी बदल सकती है हुनर नहीं, और साथ ही हमने अतिरिक्त हुनर किस तरह से अतिरिक्त आय दे सकता है इस पर भी बात की थी। यही हम बात करते हैं कशिश की, सीखना कभी हमें बंद नहीं करना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: दुनिया में सबसे बड़ी गलती ये है श्रोताओं कि हम सोच लें कि अब हमें सब कुछ आ गया है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। नई तकनीकें लगातार सामने आ रही हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेवाएं और आधुनिक उपकरण कार्य क्षेत्रों को बदल रहे हैं। ऐसे समय में जो युवा सीखते रहेंगे वही आगे बढ़ेंगे।
1: जी हाँ,
0: ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब हम उसे प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सके। स्पष्ट बोलना, ध्यान पूर्वक सुनना, दूसरों के विचारों का सम्मान करना और टीम में सहयोग करना आज हर क्षेत्र की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छे संवाद की क्षमता कई बार औसत ज्ञान वाले व्यक्ति को बड़ी सफलता दिला देती है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के डिजिटल युग में हुनर आय के नए अवसर भी प्रदान करती है। अनेक लोग श्रोता साथियों अपनी नियमित नौकरी के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षण, कंटेंट लेखन और वीडियो संपादन जैसे कई कामों में अपने हुनर को आजमाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है बल्कि भविष्य के लिए भी सुरक्षा बढ़ती है। जागृति जी, तकनीक के इस दौर में स्वयं को लगातार अपडेट रखना बहुत जरूरी है। AI जैसे श्रोता साथियों तकनीकें पूरी दुनिया को बदल रही है और आने वाले वर्षों में अनेक नई नौकरियां भी पैदा होंगी, कई पुराने कार्य समाप्त भी हो सकते हैं। इसलिए हमारे युवाओं को सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ साथ अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाता रहता है वही भविष्य में सफल रहता है। जागृति जी,
0: बिल्कुल इसी के साथ हर नौकरी में चुनौती आती है, सफल वही होता है जो समस्या देखकर घबराता नहीं बल्कि समाधान खोजता है। कशिश, हम देखते हैं कि नेतृत्व की शुरुआत भी यहीं से शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में रास्ता निकालना सीख लेता है वो हर संस्था और समाज के लिए मूल्यवान बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम सभी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, अंतर केवल इतना है कि कोई इन घंटों का सही उपयोग करता है और कोई उन्हें व्यर्थ गंवा देता है।
1: जी हाँ,
0: समय का सम्मान करना प्राथमिकता तय करना है और अनुशासन बनाए रखना एक ऐसा हुनर है जो हर दूसरे हुनर को और अधिक प्रभावी बना देता है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार हमारे पास ज्ञान और कौशल दोनों होते हैं कशिश, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण हम पीछे हट जाते हैं।
1: जी जी,
0: आत्मविश्वास वो शक्ति है श्रोताओं जो व्यक्ति को नई जिम्मेदारियां स्वीकार करने और कठिन परिस्थितियों में डटे रहने का साहस देता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए सकारात्मक सोच हमें हर चुनौती में अवसर देखने की दृष्टि देती है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की, तो किसी भी व्यक्ति के ज्ञान और हुनर का वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देता है जब उसके भीतर आत्मविश्वास होता है। जागृति जी, यदि किसी के पास उत्कृष्ट प्रतिभा है लेकिन स्वयं पर विश्वास नहीं है तो वह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर आत्मविश्वासी व्यक्ति सीमित संसाधनों में भी बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं है बल्कि अपनी मेहनत, अपनी तैयारी और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना है।
0: बिल्कुल,
1: सकारात्मक सोच व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब कोई काम पहली बार सफल नहीं होता जागृति जी, तब सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को दोबारा प्रयास करने का साहस देती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे प्रयास से होती है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में विशेषज्ञ नहीं बनता। यदि युवा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा नया सीखने का संकल्प लेंगे तो कुछ वर्षों बाद वही सीख उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए हमारे श्रोता साथियों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि श्रोता साथी, हुनर व्यक्ति को केवल रोजगार पाने योग्य नहीं बनाता बल्कि रोजगार देने योग्य भी बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: यही आत्मनिर्भरता की असली पहचान है। हर वर्ष कम से कम एक नया कौशल जरूर सीखे, अपनी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करें, डिजिटल तकनीक से जरूर जुड़े, अनुभव से सीखने की आदत विकसित करें, असफलताओं को सीखने का अवसर समझें, पुस्तकों, कार्यशालाओं और अनुभवी लोगों से ज्ञान प्राप्त करें।
1: बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों आज की बातों से हम ये समझ पाए हैं कि आज का युग केवल नौकरी प्राप्त करने का नहीं बल्कि स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने का युग है। डिग्री श्रोता साथियों में अवसरों के द्वार तक पहुँचाती है, लेकिन हुनर जो है वो उन अवसरों को सफलता में बदलता है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, नौकरी हमें आय देती है जबकि कौशल हमें आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। बदलती दुनिया में वही युवा सबसे अधिक सफल होते हैं जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: यदि युवा नौकरी के साथ साथ अपने कौशल का विकास करते रहेंगे जागृति जी, तो वे किसी भी परिस्थिति में कभी पीछे नहीं रह पाएंगे।
0: जी हाँ,
1: वे नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे, नए अवसरों को पहचान पाएंगे और साथ ही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकेंगे।
0: बिल्कुल, इसलिए हम कह सकते हैं हमारे श्रोता साथियों को कि डिग्री हमें अवसर देती है लेकिन उन हुनर उन अवसरों को उपलब्धि में बदलता है।
1: बिल्कुल,
0: नौकरी हमें आज का सहारा देती है जबकि कौशल हमारे पूरे भविष्य को मजबूत बनाता है। इसलिए केवल नौकरी पाने का सपना मत देखिए, स्वयं को इतना सक्षम बनाइए कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आपका आत्मविश्वास और आपका हुनर हमेशा आपके साथ खड़ा है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए डिग्री अवसर का द्वार खोलती है लेकिन हुनर सफलता की राह बनाता है।
1: जी हाँ, तो इन्हीं बातों के साथ श्रोता साथियों, अब जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे पूरी हो चुकी है, समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो जागृति जी कार्यक्रम से विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाते जाते सुनवा देते हैं श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की बातें जो भी रही है वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ू जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ू ने आपड़ी अब्बा वारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है पानी की हर बूंद स्वराज की पूंजी।
0: बिल्कुल
1: कहा गया अंजलि, जैसे कि जल है तो कल है, ये केवल एक नारा नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी है। जिस प्रकार एक एक रुपए को जोड़कर हम बड़ी पूंजी तैयार करते हैं, उसी प्रकार पानी की एक एक बूंद मिलकर जीवन, खेती, प्रकृति और समाज की सबसे बड़ी पूंजी बनती है।
0: बिल्कुल,
1: जिस राष्ट्र ने अपने जल को बचा लिया उसने अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया, और जिसने जल को व्यर्थ बहा दिया उसने विकास की नींव को कमजोर कर दिया।
0: बिल्कुल जागृति जी, सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज तब साकार होता है जब हर नागरिक अपने संसाधनों के प्रति जिम्मेदार बने।
1: बिल्कुल,
0: पानी प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है और इसी की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसलिए कहा जा सकता है कि पानी की हर बूंद स्वराज की पूंजी है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय पर हमारी बातें जरूर रहने वाली है, लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत आपको करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं, पानी की हर बूंद स्वराज की पूंजी है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, अगर पानी स्वराज की पूंजी क्यों है इसको लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो साथियों, जैसा कि जल के बिना जीवन की कल्पना तो असंभव ही है।
1: बिल्कुल,
0: चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी, वनस्पति, कृषि, सभी का आधार जल ही है। अगर किसी गांव में पर्याप्त जल

0: नहीं है जागृति जी, बल्कि भविष्य को बचाने का अभियान है। जब हम वर्षा जल का संग्रह करते हैं, रिसाव रोकते हैं, तालाबों का संरक्षण करते हैं और पानी का सोच समझकर प्रयोग करते हैं, तब हम आने वाले वर्षों के लिए जल की पूंजी तैयार करते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, और जैसे कि महात्मा गांधी जी का भी सपना था कि गांव आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर गांव की पहली आवश्यकता होती है पर्याप्त जल। जहां खेतों में पानी होगा श्रोताओं, वहां किसान खुशहाल होगा। जहां किसान खुशहाल होगा वहां गांव समृद्ध होगा, और जहां गांव समृद्ध होंगे वहीं सच्चे स्वराज की नींव मजबूत होगी। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे गांवों ने सामूहिक प्रयास से तालाबों का पुनर्जीवन किया है।
0: जी जी,
1: चेक डैम बनाए हैं, वर्षा जल संग्रहण को अपनाया है, जल संकट से बाहर निकलने का सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है। और ये सारी बातें बताती है कि जब समाज एकजुट होकर काम करता है तब असंभव भी संभव हो जाता है।
0: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं कि इसमें हर नागरिक की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सरकार की योजनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार के भरोसे जल संरक्षण संभव नहीं है। हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, जैसे कि नल खुला न छोड़ें, वर्षा जल का संचयन करें, पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। इसी के साथ श्रोता साथियों, तालाब कुएं बावड़ियों की सफाई करते रहें नियमित तौर पर, और बच्चों को जल संरक्षण का महत्व सिखाएं।
1: जी हाँ,
0: खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे आधुनिक सिंचाई तकनीकी को हमें अपनाना होगा, और जल स्रोतों में कचरा और गंदगी नहीं डालनी है। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे प्रयास होते हैं जागृति जी, जो बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बता रहे हैं कि पानी की हर बूंद स्वराज की पूंजी होती है, तो श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा साथी होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अगर युवा जल संरक्षण का संकल्प लेंगे तो गांव-गांव में जल क्रांति लाई जा सकती है। स्कूल कॉलेज सामाजिक संस्थानों के माध्यम से जल जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग कर हम जल को बचाने का संदेश हर घर तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह महिलाओं की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। घर में पानी के उपयोग का सबसे बड़ा दायित्व महिलाओं पर होता है। आज हम देखते हैं कि कोई भी कार्य करना होता है तो घर की महिलाएं करती है, और अगर घर की महिलाएं पानी को बहा देंगी, बेफालतू का पानी अगर व्यर्थ जाएगा तो हो सकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को पानी देखने तक भी न मिले। इसीलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जल संरक्षण में हमारी जो महिलाओं की भूमिका होती है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है।
0: जी,
1: अगर प्रत्येक परिवार पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करे तो लाखों लीटर पानी प्रतिदिन बचाया जा सकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है। आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, हम आज जान पा रहे हैं कि पानी की हर बूंद स्वराज की पूंजी क्यों है। यहीं अब बात आती है जागृति जी, जल और पर्यावरण की। तो हम देखते हैं कि जल संरक्षण का सीधा संबंध पर्यावरण संरक्षण से है।
1: बिल्कुल,
0: अधिक पेड़ होंगे तो वर्षा भी बेहतर होगी, भूजल का स्तर सुधरेगा, नदियां जीवित रहेंगी। इसलिए जल बचाना और वृक्ष लगाना दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए श्रोता साथियों, जल बचाने के कुछ सरल उपाय हैं जो हम सभी को अपनाने चाहिए। जैसे कि ब्रश करते समय नल खुला न छोड़ें। बहुत सी बार हम देखते हैं कि हम हाथ धो रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं और बहुत सी बार बर्तन साफ करते समय भी हम नल को बहुत देर तक खुला छोड़ देते हैं। इससे हम देखते हैं जागृति जी कि बहुत सारा पानी व्यर्थ चला जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो हमें ध्यान रखना है कि जरूरत के हिसाब से ही हम पानी का प्रयोग करें। वाहन धोने में भी पाइप की बजाय बाल्टी का प्रयोग करें, वर्षा जल का संग्रहण करें, रिसते हुए नलों की तुरंत मरम्मत करें। घरेलू उपयोग के लिए जो पानी का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका पुनः उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने घर के आसपास में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पोषण वाड़ी लगा सकते हैं, जिससे वो पानी जो है वो व्यर्थ न बहकर हमारे ही काम आएगा।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, खेतों में पानी की आवश्यकता के अनुसार हमें सिंचाई करने की जरूरत है।
1: जी हाँ अंजलि, और सच्चा स्वराज केवल अधिकार मांगने से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने का भी नाम है। श्रोताओं, जब हर नागरिक ये समझ जाएगा कि पानी केवल उसका नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा संपत्ति है, तो जल संरक्षण जन आंदोलन बनेगा। स्वराज का अर्थ है अपने संसाधनों की रक्षा करना, उनका न्यायपूर्ण उपयोग करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण करना। कल्पना कीजिए श्रोताओं कि यदि हर परिवार प्रतिदिन केवल 10 लीटर पानी बचाएगा तो एक गांव में 1000 लीटर और पूरे देश में करोड़ों लीटर पानी प्रतिदिन सुरक्षित किया जा सकता है।
0: जी जी।
1: और यही छोटी छोटी बूंदे भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बनती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि पानी केवल प्रकृति का उपहार नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। आज जो पानी हम बचाएंगे वही कल खेतों को हरियाली देगा, पशुओं को जीवन देगा, घरों की जरूरतों को पूरा करेगा और गांव को आत्मनिर्भर बनाएगा। श्रोता साथियों, जल संरक्षण किसी एक व्यक्ति या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा भागीदारी का विषय है।
1: बिल्कुल,
0: जब हर परिवार, हर किसान, हर युवा और हर बच्चा पानी की एक एक बूंद का महत्व समझेगा तब जल संकट का समाधान भी हमारे अपने प्रयासों से संभव होगा।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा स्वराज तभी मजबूत होगा श्रोता साथियों जब हमारे गांव अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण स्वयं करेंगे। वर्षा जल का संग्रह, तालाबों और कुओं का पुनर्जीवन और जल का सोच समझकर उपयोग, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार, ये केवल अच्छे काम नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर और समृद्ध समाज की पहचान है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए श्रोता साथियों, हम सभी को पानी की हर बूंद को बचाना है क्योंकि हर बूंद में जीवन है और हर बूंद में भविष्य है और हर बूंद में हमें सच्चे स्वराज की ओर एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है।
1: बिल्कुल अंजलि, इस तरह हम कह सकते हैं कि पानी केवल हमारी आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का अधिकार है। अगर हम आज जल की एक एक बूंद का सम्मान करेंगे तो कल हमारी धरती हरी भरी रहेगी, खेत लहलहाएंगे, नदियां निर्मल बहेंगी और जीवन खुशहाली से भर जाएगा। लेकिन यदि हमने लापरवाही की तो आने वाली पीढ़ियां हमसे यही प्रश्न करेंगी कि जब समय था तब हमने पानी को क्यों नहीं बचाया। श्रोताओं, सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था का विषय नहीं है, ये हमारी सोच का विषय है, हमारी जिम्मेदारी का विषय है और हमारे व्यवहार का परिचायक है। जब हर नागरिक की समझ लेगा अंजलि कि पानी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा पूंजी है, तभी स्वराज का वास्तविक अर्थ साकार होगा।
0: जी हाँ।
1: जल संरक्षण कोई सरकारी अभियान नहीं है श्रोताओं, बल्कि जन जन का संकल्प बनना होगा। जब हर घर जल बचाने का केंद्र बनेगा, जब हर गांव अपने तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित करेगा, जब हर किसान पानी की हर बूंद का सदुपयोग करेगा और हर बच्चा जल संरक्षण का संदेश वाहक बनेगा, तब भारत वास्तव में आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए श्रोताओं, इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी कार्य किया है। आज हमारे सामने वो अवसर है कि हम अपनी छोटी से छोटी आदत से एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
0: जी जी।
1: एक बंद किया गया नल, एक लगाया गया पौधा, एक बचाई गई बूंद और एक जागरूक किया गया व्यक्ति, यही वे छोटे छोटे कदम हैं जो स्वराज की मजबूत नींव बनते हैं अंजलि।
0: बिल्कुल,
1: मैं पानी की हर बूंद का सम्मान करूंगा, ऐसा हमें संकल्प लेना होगा, अपने मन में ठानना होगा श्रोता साथियों कि हम उसे व्यर्थ नहीं बहने देंगे। वर्षा जल का संरक्षण करेंगे, जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे और अपने परिवार, समाज तथा आने वाली पीढ़ियों को जल बचाने के लिए प्रेरित करेंगे।
0: जी जी।
1: क्योंकि पानी की हर बूंद पानी नहीं बल्कि जीवन, समृद्धि, आत्मनिर्भरता और सच्चे स्वराज की सबसे अमूल्य पूंजी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि पानी केवल प्रकृति का उपहार नहीं बल्कि जीवन, विकास और स्वराज की अमूल्य पूंजी है।
1: बिल्कुल,
0: इसकी प्रत्येक बूंद में किसान की मुस्कान, बच्चों का भविष्य और प्रकृति की हरियाली और राष्ट्र की समृद्धि छिपी हुई है। हम सब मिलकर यह संकल्प ले सकते हैं कि जल की एक एक बूंद का हमें सम्मान करना है, उसे व्यर्थ नहीं बहने देना है और जल संरक्षण को अपने जीवन का संस्कार बनाना है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, याद रखिए कि जब बूंद बूंद बचेगी तभी धरती मुस्कुराएगी, जब धरती मुस्कुराएगी तभी गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और जब गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तभी सच्चे स्वराज का सपना साकार होगा।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए पानी की हर बूंद को स्वराज की पूंजी माने, उसे बचाएं, संजोएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी जिम्मेदारी है और यही सच्चे स्वराज की सबसे मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की, जाना पानी की हर बूंद स्वराज की पूंजी किस तरह से है। अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल,

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बूंद बूंद से जीवन है, बूंद बूंद से विकास है, बूंद बूंद से समृद्ध किसान है, बूंद बूंद से खुशहाल परिवार है,
1: बिल्कुल
0: बूंद बूंद से सुरक्षित भविष्य है और बूंद बूंद से ही सच्चे स्वराज का निर्माण है। पानी को केवल संसाधन नहीं अपनी सबसे बड़ी पूंजी माने और उसके संरक्षण को अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य बनाए।
1: जी जी,
0: यही सच्चे स्वराज की पहचान है, यही राष्ट्र के प्रति हमारी सच्ची सेवा है और यही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे अमूल्य विरासत होगी।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आपके साथ विदा लेते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम घूमर हमर वावरी अमर हित्ते बोन ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवे बोनो आप सब हमले रिया हो आपरु सामुदायिक रेडियो वाकड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में।
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थे के हां कार्यक्रम घूमर ने लेने एक ना विषय ने हाते मनीषा बोन असे आपरे कार्यक्रम में भाईन बोनो ते की बातचीत नो विषय है के आपरी जे बोने है ई अवड़ेना टाइम में ऑनलाइन घना एवं काम करी रही है जेन तक की ई खुद ने आत्मनिर्भर बनावी सके। तो ई ऑनलाइन जे काम करी रही है इनमें सुरक्षा नु हरते ध्यान राख के ने कया एवं सुरक्षित अवसर है जे एना ने बल्ले घना जरूरी है ई हंगरी वाते आज अपने कार्यक्रम में करवा वाला हां। पण कार्यक्रम ने शुरुआत में अपनी भाईन बोनो ने हमरा विदा गीत ने मोरे कर अपनी वाते
0: હવે અંજલિ બોન તો ભાઈ બોનો હમળતા રેજો આપણું રેડિયો આપણી વાતે વાકડ રેડિયો 90.8 FM માં

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुंद हूँ था का?
0: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुंद, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। भारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
4: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जवाब मिलने तक परेशान करते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार सोचकर खुद ही बड़ा बना देते हैं। कभी कभी समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी सोच उसे बना देती है। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वावर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारेश, लेकर हाजिर हो चुकी हूं श्रोता साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।

श्रोता साथियों, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो जीवन की उन बातों को समझने की कोशिश करता है जो अक्सर हमारे आसपास तो होती है लेकिन हमारी नजर उन पर कम जाती है। आज का विषय है, ज्यादा सोचना ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जिससे शायद हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में जुड़ा है, चाहे वह छात्र हो, किसान हो, गृहिणी हो, युवा हो या बुजुर्ग। कभी न कभी हम सभी किसी बात को लेकर इतना सोचने लगते हैं कि वह सोच हमारी शांति छीन लेती है। तो आज कार्यक्रम में हमारी आपसे इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला ये गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ज्यादा सोचना ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। जी हाँ श्रोता साथियों, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने की शक्ति दी है। यही शक्ति हमें निर्णय लेने, भविष्य की योजना बनाने और समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है। लेकिन श्रोता साथियों, जब यही सोच नियंत्रण से बाहर हो जाती है ना, तब वह मददगार नहीं बल्कि बोझ बन जाती है। कई बार हम किसी छोटी सी बात को लेकर घंटों, दिनों और कभी कभी महीनों तक सोचते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल तो न हो जाऊं। इन सवालों का श्रोता साथियों कभी भी कोई भी अंत नहीं है। किसी ने कहा है कि सोच हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोच हमें वहीं खड़े कर देती है। इसलिए ज्यादा सोचने की आदत को हमें खुद से दूर करना है। और जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है उसमें ये आदत कैसे बनती है, इस बारे में हम बात करें तो दोस्तों, अधिक सोचने की शुरुआत अक्सर चिंता से होती है। जब हमें किसी बात का डर होता है तब हमारा मन बार बार उसी विषय पर लौटता है और धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। कुछ लोग हर निर्णय से पहले इतना सोचते हैं ना श्रोता साथियों कि निर्णय ही नहीं ले पाते। कुछ लोग बीते हुए समय की गलतियों को बार बार याद करते रहते हैं। कुछ लोग भविष्य की ऐसी घटनाओं की चिंता करते हैं जो शायद कभी हो ही नहीं। इस तरह श्रोता साथियों, हमारा मन वर्तमान से दूर होकर कल्पनाओं और आकांक्षाओं में भटकने लगता है। आपने भी श्रोता साथियों कभी महसूस किया हो तो सोचिएगा कि अक्सर हम कुछ ऐसी ऐसी बातों को लेकर चिंता करते हैं जो असल में चिंता करने लायक होती ही नहीं है। और जब हम इन सारी चीजों को लेकर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और उन चीजों को सोचते रहते हैं तो हमारी जो चिंता है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और इसी तरीके से आज हम एक चीज को लेकर सोच रहे हैं तो कल दूसरी चीज को लेकर सोचेंगे और ये हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। और जब ये हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है तो ज्यादा सोचने के जो नुकसान होते हैं वो हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्यादा सोचने के जो नुकसान है वो हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। यानी कि दोस्तों, जब हम लगातार किसी बात पे उलझे रहते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, नींद प्रभावित होती है, मन हमेशा बेचैन रहने लगता है और खुशी कम हो जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति का काम से ज्यादा अपनी चिंताओं में व्यस्त रहना जरूरी हो जाता है उसके लिए। इसलिए किसी ने कहा है कि कई बार थकान शरीर से नहीं लगातार चलती सोच से पैदा होती है। तो दोस्तों, आपको मैं कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा सोचने की जो आदत है वो हमारे साथ साथ हमारे घर परिवार के सदस्यों पर भी असर करती है। इसलिए इस समस्या को समय रहते पहचान कर खुद को उससे दूर रखने की जरूरत है। इस समस्या का हल क्या हो सकता है ये कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको अवश्य बताऊंगी, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, यहीं अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि क्या सोच से समस्या का हल होता है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सोचना और समाधान ढूंढना दोनों अलग अलग बात है, लेकिन एक ही बात को बार बार दोहराते रहना समस्या का समाधान नहीं है। मान लीजिए कि किसी किसान की फसल खराब हो गई, अगर वह केवल यही सोचता रहे कि नुकसान क्यों हुआ तो उसकी स्थिति कभी नहीं बदलेगी, लेकिन वह यह सोचे कि अगली बार क्या सुधार किया जा सकता है और किसी व्यक्ति से परामर्श ले तो उसकी सोच उपयोगी बन सकती है। यानी कि श्रोता साथियों, इस बात से हमें साफ पता चलता है कि सोच तब लाभदायक है जब तक वह हमें कार्य की ओर ले जाए, और जब सोच हमें केवल चिंता की ओर ले जाती है तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है। देखते हैं ना श्रोता साथियों कि अक्सर हम अपने मन को आराम नहीं देते। जैसे शरीर को विश्राम चाहिए होता है, वैसे ही मन को भी चाहिए होता है, लेकिन हम लगातार हर किसी से तुलना करते रहते हैं, भविष्य की चिंता करते रहते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बीती बातों को याद करते करते अपने मन की चिंता को बढ़ा देते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि हमारा जो मन है वो हमेशा ऐसी बातों को लेकर चिंता में रहता है जो चिंता करने लायक ही नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, हर रास्ता पहली नजर में साफ नहीं दिखता। कुछ बातें समय को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि हर गांठ सोच से नहीं धैर्य से खुलती है। इसलिए श्रोता साथियों, आज के समय में ज्यादा सोचने का एक बड़ा कारण तुलना भी है। हम दूसरों की सफलता को देखते हुए बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं कि मैं क्यों पीछे हूँ, मेरे पास वह क्यों नहीं है, मैं उतना अच्छा क्यों नहीं हूँ। तो श्रोता साथियों, यही जो तुलना की चीजें हैं वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी की खुशियों को छीन लेती है। कहना चाहूंगी कार्यक्रम के माध्यम से कि हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ, क्षमताएं और यात्रा अलग होती है, इसलिए हमें कभी भी हमारी तुलना किसी और व्यक्ति से नहीं करनी है। हम हमारी कहानी खुद लिख सकते हैं, और हमारी कहानी किसी और व्यक्ति की कहानी से मेल नहीं खा सकती। इसलिए हमेशा अधिक सोचने की जो चीजें हैं उसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। सोचना है तो उसका समाधान ढूंढें। उस समस्या के समाधान के साथ आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपकी जिंदगी को बदल देंगी। यही बात आती है दोस्तों कि क्या अधिक सोचने वाले लोग कमजोर होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अधिक सोचने वाले लोग अक्सर संवेदनशील और जिम्मेदार होते हैं, वे हर बात को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब संवेदनशीलता चिंता में बदल जाती है। इसलिए जरूरत सोच को खत्म करने की नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देने की है। इसलिए हमें हमारी जिंदगी को थोड़ा सा सरल बनाना है। इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें हर बात का जवाब आज नहीं मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो हमें कभी नहीं मिलेगा, वो हमें अवश्य मिलेगा। उसके लिए हमें धैर्य को बनाए रखना है। हर योजना पूरी तरीके से सफल हो ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सी बार कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को लेकर योजना बना रहा है और उसकी योजना में वो सफल नहीं होता है तो अगली बार से वो योजना बनाना ही बंद कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमारे जीवन में एक योजना से सफलता नहीं मिल रही है तो हमें उस प्रयास को निरंतर जारी रखना है। एक वक्त ऐसा आएगा जब हम हमारी योजना को सफल बना पाएंगे। हमें हर व्यक्ति की चीजों को समझना है। कुछ चीजें अनिश्चित होती हैं जीवन में, उनको भी हमें स्वीकार करने की जरूरत है। कहते हैं ना कि जिंदगी को समझने की कोशिश अच्छी है, लेकिन जिंदगी को जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने मन को शांत रखने की चीजों के बारे में सोचिए। इसके लिए आप कुछ छोटे छोटे उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि आप अपनी चिंता को डायरी में लिख लीजिए, या अपने ऐसे किसी व्यक्ति से साझा कीजिए जिस पर आप भरोसा करते हैं। इसी के साथ जो आपके नियंत्रण में नहीं है उन सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। हर समस्या का हल तुरंत खोजने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। परिवार और मित्रों से बातचीत कीजिए, अपने शौक और रुचियों के लिए समय निकालिए, क्योंकि
यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिससे हम अपने मन को खुश रख सकते हैं और वर्तमान के क्षण को जीने की आदत डालिए। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से कार्यक्रम में हम जान पाए कि ज्यादा सोचना किस तरीके से हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। यही आपको अंत में कहना चाहूंगी कि सोचना हमारी शक्ति है, लेकिन वही शक्ति जब कमजोरी बन जाती है दोस्तों, तब वह हमें वर्तमान से दूर कर देती है। जीवन की हर समस्या का समाधान केवल सोचने से नहीं बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने से आता है। हमें यह समझना होगा कि हर बात हमारे नियंत्रण में हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ प्रयास और कुछ ऐसी चीजें जो जीवन में बदलनी जरूरी है, उनके माध्यम से हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मन को हर समय सवालों का घर मत बनाइए, कुछ खिड़कियां उम्मीद के लिए खुली रखिए। जिंदगी केवल सोचने के लिए नहीं मिली है, यह हमें महसूस करने, सीखने और जीने के लिए मिली है। तो अपनी जिंदगी का आनंद लीजिए और अपने मन को शांत रखिए। आशा करती हूँ कि कार्यक्रम में जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो केवल युवाओं के भविष्य से ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास से जुड़ा हुआ है।
0: जी हाँ,
1: आज का हमारा कार्यक्रम का विषय है विश्व युवा कौशल दिवस। श्रोता साथियों, हर वर्ष 14 जुलाई यानी आज ही के दिन को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: यह दिन हमें याद दिलाता है कि केवल डिग्री हासिल कर लेना ही सफलता की गारंटी नहीं है बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौशल यानी कि स्किल भी उतना ही आवश्यक होता है।
0: बिल्कुल,
1: आज का समय श्रोता साथियों तेजी से बदल रहा है, नई तकनीक, नए रोजगार, नए अवसर लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में मनीषा, यदि युवा समय के साथ अपने कौशल को विकसित नहीं करेंगे तो पीछे छूट सकते हैं। युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यदि हमारे युवाओं के पास सही कौशल होगा तो वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे बल्कि देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
0: बिल्कुल,
1: इसी उद्देश्य से विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है ताकि युवाओं को कौशल विकास के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं विश्व युवा कौशल दिवस को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनकी ऊर्जा, उत्साह, नई सोच और कार्य करने की क्षमता ही किसी भी देश के वर्तमान भविष्य को निर्धारित करती है।
1: जी हाँ।
0: यदि युवाओं को सही दिशा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यवहारिक कौशल प्राप्त हो जाए तो श्रोता साथियों, वे न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान दे सकते हैं। आज के समय में श्रोता साथियों, वे युवा केवल डिग्री प्राप्त करने तक पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके साथ व्यवहार कौशल, तकनीकी ज्ञान, संचार क्षमता, नेतृत्व क्षमता और समस्या समाधान की योग्यताएं भी आवश्यक हो गई हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। श्रोता साथियों से हम यही कार्य

0: अनेक योग्यताएं शामिल होती हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जब युवा इन कौशलों को सीखते हैं तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले भी बन जाते हैं। मनीषा, आज पूरी दुनिया डिजिटल युग में प्रवेश कर चुकी है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI और कई ऐसी ऑनलाइन शिक्षा, ई कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं ने हमारे काम करने के तरीके को बदल दिया है।
1: बिल्कुल,
0: जो युवा नई तकनीक सीख रहे हैं वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो केवल पुराने तरीकों पर निर्भर हैं उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। आज का युवा जो है वो जितना अधिक नई चीजों को सीखेगा उतना ही भविष्य उसका सुरक्षित रहेगा।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए श्रोता साथियों प्रतिवर्ष यानी कि आज ही के दिन 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य श्रोता साथियों केवल रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करना ही नहीं बल्कि युवाओं को जागरूक करना, उन्हें आगे बढ़ाना भी इनका काम है। साथ ही हम देखते हैं कि सरकारों, शैक्षणिक संस्थाओं, उद्योगों और समाज कौशल विकास की दिशा मिलकर भी श्रोता साथियों हम देखते हैं कि उन्हें प्रेरित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: विश्व युवा दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है श्रोता साथियों बल्कि युवाओं के सपनों को साकार करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और बदलती दुनिया के अनुरूप तैयार करने का एक वैश्विक अभिचाय भी है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही हमारे युवा साथियों को कहना चाहेंगे कि आज का जो युवा है वो कहीं सारी चीजों में आगे बढ़ सकता है। हर युवा को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रभावी संवाद कौशल वो सीख सकते हैं, कंप्यूटर, डिजिटल ज्ञान, समय प्रबंधन करना, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, निर्णय लेने की क्षमता, आर्थिक समझ, उद्यमिता, नई तकनीक सीखने की आदत, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता। श्रोता साथियों, ये सभी कौशल जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करते हैं। आज हम देखते हैं कि गांव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती, कमी होती है अवसरों और सही मार्गदर्शन की। यदि ग्रामीण युवाओं को आधुनिक खेती, पशुपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, सिलाई, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, ब्यूटी और कई ऐसी चीजें हैं, अगर वो आए और ऐसे कौशल वो सीख जाएं तो वे अपने ही गांव में रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। इससे श्रोता साथियों शहरों की ओर पलायन भी कम होगा और गांव जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत बन पाएगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि कौशल का अर्थ केवल मशीन को चलाना या किसी तकनीकी का कार्य करना नहीं है। कौशल वह क्षमता है श्रोता साथियों जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी कार्य को दक्षता, गुणवत्ता और आत्मविश्वास के साथ पूरा करता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि तकनीकी कौशल, डिजिटल कौशल, संचार कौशल, नेतृत्व कौशल, टीम वर्क, समय प्रबंधन, समस्या समाधान, रचनात्मक सोच और जीवन कौशल श्रोता साथियों, इन सभी कौशलों का संतुलित विकास से वो व्यक्ति को हर परिस्थिति में सफल बनाने में सहायता करता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आत्मनिर्भर भारत का सपना जो है वो तभी पूरा होगा जब देश का युवा आत्मनिर्भर बनेगा। यदि युवा अपने कौशल के आधार पर स्वयं का रोजगार शुरू करे, छोटे उद्योग स्थापित करे, श्रोता साथियों स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुँचाए और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करे तो वे अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कौशल विकास केवल व्यक्ति की आय नहीं बढ़ाता बल्कि पूरे समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत करता है। आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। यदि ग्रामीण युवतियों को सिलाई, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर, डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, ब्यूटी एंड वेलनेस, हस्तशिल्प, ई कॉमर्स और वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण मिले तो वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो पूरा परिवार मजबूत होता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से विश्व युवा कौशल दिवस को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
0: जी जी।
1: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: कर दिखाओ।
1: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस को लेकर। श्रोता साथियों, आज मोबाइल केवल बातचीत का साधन नहीं रहा है, इसके माध्यम से पढ़ाई, बैंकिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी, ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल भुगतान, व्यवसाय और रोजगार के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन डिजिटल दुनिया में सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। युवाओं को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव और जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का उपयोग करना भी सीखना चाहिए।
2: बिल्कुल,
1: अच्छा कौशल केवल नौकरी नहीं दिलाता बल्कि व्यक्तित्व भी निखारता है। जो युवा लगातार सीखते रहते हैं श्रोता साथियों, वे हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेते हैं। वे असफलता से घबराते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच किसी भी कौशल को सफल बनाने की सबसे बड़ी ताकत होती है।
2: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का सपना श्रोता साथियों तभी साकार होगा जब देश का प्रत्येक युवा किसी न किसी कौशल में दक्ष होगा।
1: बिल्कुल,
2: कुशलवान युवा श्रोता साथियों केवल नौकरी खोजने वाला नहीं होता है बल्कि वो रोजगार देने वाला भी बन जाता है।
1: बिल्कुल,
2: जब युवा अपने कौशल के आधार पर छोटे छोटे उद्योग, स्टार्टअप और स्वरोजगार शुरू करते हैं तब नए रोजगार भी पैदा होते हैं और देश की आर्थिक प्रगति भी होती है।
1: बिल्कुल,
2: साथ ही हम देखते हैं कि युवाओं के कौशल विकास में परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण संस्था, उद्योग और समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: जी हाँ,
2: बच्चों की रुचि को समझ कर श्रोता साथियों उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: केवल डिग्री पर ध्यान देने के बजाय कौशल आधारित शिक्षा को भी हमें सम्मान और महत्व देना है।
1: बिल्कुल मनीषा, कई बार युवा कुछ नया सीखना चाहते हैं लेकिन परिवार या समाज उन्हें केवल पारंपरिक रास्ता अपनाने की सलाह देता है।
2: बिल्कुल,
1: हमें युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। यदि कोई युवा खेती में नवाचार करना चाहता है, कोई डिजिटल क्षेत्र में काम करना चाहता है या कोई अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि प्रोत्साहन मिलने पर युवा चमत्कार कर सकते हैं। श्रोता साथियों, सामुदायिक रेडियो कौशल विकास एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। रेडियो के माध्यम से स्थानीय युवाओं को सफल उद्यमों की कहानी सुनाई जा सकती है, अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी जा सकती है, सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जा सकता है तथा स्थानीय विशेषज्ञों के अनुभव भी साझा कर सकते हैं।
2: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, इससे दूर दराज के गाँवों तक भी उपयोगी जानकारी आसानी से पहुंच सकती है। हर युवा के भीतर मनीषा कोई ना कोई विशेष प्रतिभा होती है। जरूरत है उसे पहचानने, निखारने और लगातार सीखते रहने की। यदि आप आज एक नया कौशल सीखना शुरू कर देंगे युवा साथियों, तो आने वाले कुछ वर्षों में वही कौशल आपकी पहचान बन सकता है। याद रखिए कि डिग्री अवसर दिला सकती है लेकिन कौशल उस अवसर को सफलता में बदलता है।
2: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि युवाओं को समय का भी सही उपयोग करना चाहिए, नई नई चीजें सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए। श्रोता साथियों, केवल सरकारी नौकरी की तैयारी करने तक हमें सीमित नहीं रहना है।
1: जी जी।
2: हमें विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण लेना चाहिए। अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी और निरंतर सीखने की इच्छा ही हमें सफलता की ओर ले जाती है।
1: बिल्कुल।
2: साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि समय के साथ काम करने के तरीकों को भी हमें बदलना है। पहले जिन कार्यों में श्रोता साथियों अधिक समय लगता था वे आज नई तकनीकी की सहायता से जल्दी पूरे हो जाते हैं। इसीलिए युवाओं को नई तकनीकी, नए कार्यों को सीखते रहना चाहिए। श्रोता साथियों, जो युवा समय के अनुसार अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाते हैं उनके लिए सफलता के रास्ते अधिक खुलते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, विश्व युवा कौशल दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं है बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। यह हमें याद दिलाता है कि बदलती दुनिया में वही आगे बढ़ेगा जो सीखने की इच्छा कभी नहीं छोड़ेगा। आज का युवा यदि अपने समय का सदुपयोग करते हुए शिक्षा के साथ कौशल, तकनीक, व्यवहार, नेतृत्व और नवाचार को अपनाता है तो वह किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होगा।
2: बिल्कुल,
1: कौशल व्यक्ति को केवल रोजगार नहीं देता बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और समाज में एक नई पहचान भी प्रदान करता है। ग्रामीण भारत के युवाओं के पास अपार क्षमता है। आवश्यकता श्रोता साथियों केवल सही जानकारी, उचित प्रशिक्षण और अवसरों की है। जब गांव का युवा आधुनिक खेती, डिजिटल तकनीक, स्वरोजगार, स्थानीय उद्योग और नवाचार से जुड़ता है तब विकास केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे गांव की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर बदलने लगता है। यही बदलाव जो होता है वो आगे चलकर आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बनता है।
2: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि शिक्षा और कौशल का क्या संबंध है। तो श्रोता साथियों, शिक्षा हमें ज्ञान देती है, जबकि कौशल उस ज्ञान का उपयोग करना हमें सिखाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास केवल पढ़ाई ही अंजलि जी, लेकिन काम करने का अनुभव नहीं है, तो उसे आगे बढ़ने में कई सारी कठिनाइयां आ सकती है। वहीं श्रोता साथियों, शिक्षा के साथ साथ कौशल भी जुड़ जाए तो व्यक्ति है वो अधिक सक्षम बन सकता है। आज के समय में अंजलि जी, हम देखते हैं कि गाँव में अनेक प्राकृतिक और स्थानीय संसाधन उपलब्ध होते हैं।
1: बिल्कुल,
2: यदि युवाओं को इन संसाधनों का उपयोग करना सिखाया जाए तो वे न केवल गांव में रोजगार के अच्छे अवसर पैदा कर सकते हैं, बल्कि श्रोता साथियों, उनके शहरों की ओर पलायन को भी कम कर सकते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं।
1: जी हाँ मनीषा, हम हर वर्ष कम से कम एक नया कौशल अवश्य सीखें, ये संकल्प हम ले सकते हैं। दूसरों को भी सीखने के लिए प्रेरित करेंगे और अपने ज्ञान का उपयोग समाज के हित में करेंगे। सीखना कभी श्रोता साथियों समाप्त नहीं होता, और कौशल ही वह शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में बदलती है।
2: बिल्कुल,
1: जब युवा सक्षम होंगे तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो समाज आगे बढ़ेगा, और जब समाज आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश विकास, नवाचार और समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। यही विश्व युवा कौशल दिवस का वास्तविक संदेश और सबसे बड़ी प्रेरणा है। विश्व युवा कौशल दिवस हमें यह सोचने का अवसर देता है कि आने वाला समय केवल डिग्री का नहीं, बल्कि ज्ञान, दक्षता, रचनात्मकता और निरंतर सीखने की क्षमता का होगा। युवा के भीतर कुछ नया करने की ऊर्जा और प्रतिभा होती है, यदि उसे सही दिशा, उचित शिक्षण और अवसर मिल जाए तो वही युवा अपने परिवार, समाज और देश के लिए परिवर्तन का वाहक बन सकता है।
2: बिल्कुल,
1: इसलिए हमें युवाओं को केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि समस्याओं का समाधान खोजने, नए विचारों को अपनाने और समाज के लिए उपयोगी कार्य करने के लिए तैयार करना होगा।
2: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चल ही रही हैं, और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
1: जी जी,
2: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
2: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थी विश्व युवा कौशल दिवस को लेकर।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य युवाओं को यह समझाना है कि शिक्षा के साथ कौशल का होना भी आवश्यक है। आज प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपने काम को अच्छी तरह से समझे और उसको कुशलता के साथ कर सके। यह दिवस युवाओं को नई तकनीकी सीखने, रोजगार के अवसरों को पहचानने, स्वरोजगार को अपनाने, समाज के विकास में अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही श्रोता साथियों ये सरकार, शिक्षण संस्थाओं और समाज भी हमें यह संदेश देता है कि युवाओं के कौशल विकास में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम हमारे युवा साथियों को कहना चाहेंगे कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कौशल को केवल रोजगार का माध्यम न माने बल्कि जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण कला समझे।
0: जी हाँ।
1: एक कुशल युवा अपने काम में गुणवत्ता लाता है, संसाधनों का बेहतर उपयोग करता है, नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालता है और हर चुनौती को धैर्य पूर्वक निभा लेता है। यदि यही गुण वह अन्य लोगों को भी देखे दिलाए तो हम देखते हैं कि वह व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकता है। श्रोता साथियों यही गुण उसे दूसरों से अलग पहचान भी दिलाता है, चाहे वह किसान हो, कारीगर हो, शिक्षक हो, कलाकार हो, उद्यमी हो, हर क्षेत्र में कौशल ही सफलता की सबसे मजबूत नींव बनता है।
0: बिल्कुल।
1: समुदाय, विद्यालय, परिवार और स्थानीय संस्थानों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे युवाओं की रुचियों को समझें, उन्हें प्रोत्साहित करें और ऐसा वातावरण तैयार करे जहां वे बिना झिझक सीख सके, प्रयोग कर सके और अपनी प्रतिभा को निखार सके। जब समाज युवाओं पर विश्वास करता है तब युवा भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और विकास की नई कहानियां लिखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि सीखने की यात्रा कभी नहीं हमें रोकनी चाहिए, अपने कौशल को समय समय पर बेहतर बनाना चाहिए, नई तकनीकों को अपनाना होगा। अपने ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं मनीषा बल्कि समाज की भलाई के लिए भी करना होगा। एक कुशल युवा केवल अपना भविष्य नहीं बदलता बल्कि वह अपने गांव, अपने क्षेत्र, पूरे देश के उज्जवल भविष्य की मजबूत आधारशिला भी रखता है।
0: बिल्कुल।
1: यही विश्व युवा कौशल का सबसे सार्थक संदेश है कि सशक्त कौशल, सशक्त युवा और सशक्त भारत, इन्हीं तीनों का संगम एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण करता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि हर युवा के भीतर कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है। किसी को लिखना अच्छा लगता है तो कोई विज्ञान में रुचि रखता है, कोई खेल में आगे बढ़ना चाहता है तो कोई संगीत, कला या तकनीकी में अपनी पहचान बनाना चाहता है। आवश्यकता श्रोता साथियों इस बात की है कि युवा अपनी रुचि को पहचाने और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए विकसित करें।
1: जी जी।
0: जब व्यक्ति अपनी पसंद के क्षेत्र में मेहनत करता है अंजलि जी तो सफलता मिलने की संभावना है वो और ज्यादा बढ़ जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि कौशल विकास एक दिन में पूरा होने वाला नहीं है श्रोता साथियों, इसके लिए लगातार सीखते रहना पड़ता। जो युवा नई जानकारी प्राप्त करने, नए अनुभव लेने और अपनी गलतियों से सीखने की आदत रखते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं, बदलते समय के साथ खुद को बदलते हैं, सच्चे कौशल का विकास कर पाते हैं। सीखने की इच्छा श्रोता साथियों व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
1: जी हाँ मनीषा, आज का समय लगातार बदल रहा है, जो कौशल आज उपयोगी है वह कुछ वर्षों बाद बदल सकता है, इसलिए युवाओं को केवल एक बार सीख कर रुकना नहीं चाहिए बल्कि जीवन भर नई नई चीजों को सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यही आदत उन्हें हर बदलाव के साथ आगे बढ़ने की क्षमता भी देती है। श्रोता साथियों हर क्षेत्र की अपनी विशेष पहचान होती है, कहीं बांस और कहीं लकड़ी का काम प्रसिद्ध है तो कहीं हस्तशिल्प, कहीं कृषि आधारित उत्पाद तो कहीं पारंपरिक कला। यदि युवा स्थानीय संसाधनों का आधुनिक तरीके से उपयोग करना सीखे तो वे अपने क्षेत्र की पहचान को व्यवसाय में बदल सकते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत भी बना सकते हैं। कहना चाहेंगे कि समाज में किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। बिजली का काम, प्लंबिंग, सिलाई, बुटीक सेवाएं, मोबाइल रिपेयरिंग, खेती, खाद्य प्रसंस्करण, हर कौशल समाज के लिए आवश्यक है। जब हर काम का सम्मान होगा तभी अधिक युवा अपनी रुचि के अनुसार कौशल सीखने के लिए प्रेरित होंगे। कौशल का उद्देश्य मनीषा केवल किसी कार्य को दोहराना नहीं है बल्कि उसे बेहतर बनाना भी होता है। यदि युवा नए विचारों के साथ काम करें, समस्याओं के नए समाधान खोजें और स्थानीय जरूरतों के अनुसार नवाचार करें तो वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज ऐसे कौशलों की और भी आवश्यकता है जो पर्यावरण संरक्षण में मदद करें, जैसे कि जैविक खेती, वर्षा जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, सौर ऊर्जा, पौधारोपण, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग। ऐसे कौशल भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक होते हैं।
0: जी हाँ।
1: हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि कई बार युवाओं को लगता है कि कौशल केवल प्रशिक्षण केंद्रों से ही सीखा जा सकता है, जबकि सामाजिक कार्यों, स्वयंसेवी अभियानों, ग्राम सभाओं, खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने से भी नेतृत्व, संवाद योजना और टीम वर्क जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित होते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज हर क्षेत्र में अच्छा संवाद करना भी बहुत जरूरी हो गया है। यदि व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुंचा सकता है तो उसके लिए काम करना है आसान हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: अच्छा संचार श्रोता साथियों केवल बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ध्यान से सुनना, दूसरों की बातों को समझना और सम्मान पूर्वक अपनी बात को उनके सामने रखना है। यदि कौशल श्रोता साथियों कार्यस्थल या समाज दोनों में हमें सफलता दिलाता है। यही अगर बात करें कि समय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है,
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो युवा अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे कम समय में अधिक कार्य कर पाते हैं। समय पर कार्य पूरा करना जानते हैं, अपनी प्राथमिकताएं तय करना और आवश्यक कार्यों से बचने के बजाय उन्हें पूरा करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति श्रोता साथियों जीवन में अनुशासन और सफलता दोनों प्राप्त करता है।
1: जी हाँ मनीषा, किसी युवा की सफलता केवल उसकी आय या नौकरी से नहीं मापी जानी चाहिए। यदि वह अपने परिवार, समाज और देश के लिए उपयोगी कार्य कर रहा है, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है तो वही वास्तविक सफलता है।
0: जी हाँ।
1: हर युवा में क्षमता है, हर गांव में संभावना है, हर समाज में विकास के अवसर मौजूद है। आवश्यकता श्रोता साथियों केवल सही मार्गदर्शन, निरंतर अभ्यास और सीखने के जज्बे की है। जब युवा अपने कौशल को समाज की जरूरतों से जोड़ते हैं तब विकास केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रहता बल्कि पूरे समुदाय की सामूहिक प्रगति का आधार बन जाता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करें कि टीम वर्क की भावनाओं को कैसे हम विकसित करें तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि आज अधिकांश कार्य हैं वे अकेले नहीं किए जा सकते बल्कि समूह में किए जाते हैं। इसीलिए युवाओं को मिलजुल कर काम करने की भावनाओं की आवश्यकता होती है। टीम के साथ कार्य करने से नए विचार मिलते हैं, समस्याओं का समाधान जल्दी हो जाता है और कार्य की गुणवत्ता है वो बेहतर होती है।
1: बिल्कुल,
0: एक अच्छा टीम वर्क श्रोता साथियों सही वही होता है जो सहयोग और सम्मान और अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा करता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, ये बातें आगे कार्यक्रम में और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में है।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान ही चुके हैं, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि जब कोई युवा किसी काम में दक्ष होता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। वह नए अवसरों का सामना करने से नहीं घबराता बल्कि अपनी मेहनत और क्षमता पर भरोसा करना सीखता है। यही आत्मविश्वास जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल
0: मनीषा, आज केवल तकनीकी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है बल्कि अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, लोगों की बात ध्यान से सुनना, सम्मान पूर्वक संवाद करना और अपनी बात प्रभावी ढंग से रखना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह नौकरी, व्यवसाय और सामाजिक जीवन तीनों में सफलता दिलाता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, एक कुशल युवा केवल अपने लिए नहीं सोचता बल्कि समाज की समस्याओं को समझकर उनके समाधान में भी भागीदारी निभाता है। वह स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और पोषण संरक्षण जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाकर समाज को मजबूत बनाता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हर प्रयास पहली बार में सफल हो यह जरूरी नहीं है, कई बार असफलता ही सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है।
1: बिल्कुल
0: जो युवा अपनी गलतियों से सीखते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं और दोबारा प्रयास करते हैं वही आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं।
1: जी हाँ,
0: चाहूंगी श्रोता साथियों कि कोई भी कौशल एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। नियमित अभ्यास, समय की पाबंदी, मेहनत और अनुशासन किसी भी व्यक्ति को कुशल बनाते हैं। बिना अनुशासन के मनीषा प्रतिभा भी अधूरी रह जाती है, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अलग चुनौतियां होती है। यदि युवा अपने गांव या क्षेत्र की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए नए कौशल का उपयोग करे तो वे समाज में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: यही कौशल का सबसे सार्थक उपयोग होगा। साथियों, अपने सपनों को परिस्थितियों के भरोसे मत छोड़िए, हर दिन कुछ नया सीखिए, अपने अनुभव बढ़ाइए और अपनी क्षमताओं को पहचानिए, क्योंकि छोटी छोटी सीख ही आगे चलकर मनीषा बड़े अवसरों का रास्ता बनती है।
1: बिल्कुल
0: युवा कौशल दिवस हमें यह विश्वास दिलाता है कि भविष्य उन्हीं का है जो सीखने के लिए तैयार है। यदि हर युवा अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान कर उसे सही दिशा दे तो वह केवल अपने जीवन में ही नहीं बल्कि आने वाले समय को भी बदल सकता है। वो अपने काम, अपने समाज, पूरे राष्ट्र के विकास में अमूल्य योगदान दे सकता है। कौशल वह शक्ति है जो साधारण सपनों को असाधारण उपलब्धियों में बदल सकती है और यही एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि युवाओं के जीवन में परिवार की भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। परिवार ही बच्चों को अच्छे संस्कार, मेहनत करना और जिम्मेदारी निभाने की सीख देते हैं।
0: बिल्कुल
1: यदि माता पिता बच्चों की रुचि को समझकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें तो श्रोता साथियों वे अपने कौशल को बेहतर ढंग से विकसित कर पाएंगे।
0: जी हाँ।
1: परिवार का आत्मविश्वास और सहयोग युवाओं के आत्मबल को बढ़ाता है। कई बार अंजलि जी हम देखते हैं कि पुस्तकें जितना ज्ञान हमें नहीं सिखा पाती उससे अधिक ज्ञान हमें अनुभव से सीख लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: किसी कार्यों को स्वयं करके देखने पर श्रोता साथियों नई बातें सीखने का अवसर मिलता है। इसीलिए युवाओं को प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, सामाजिक कार्य और छोटे छोटे प्रोजेक्टों में भाग लेना चाहिए। उनसे हम देखते हैं कि उनका विश्वास है वो बढ़ता है और साथ ही काम करने से उन्हें अनुभव भी मिलता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है हमारा आज इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग अपना ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण अपने ने अपने मई देखाए तो अपने ने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया की निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले अपना ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट कशिश पारशर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम रोज़ाना सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक कार्यक्रम आपकी फरमाइश के माध्यम से संगीतों फरमाइशों के गीतों का एक बहुत ही सुंदर पिटारा खोल देते हैं साथियों, जिसमें आपको आपके ही द्वारा भेजे गए पसंदीदा नगमों से रूबरू करवाया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आज भी ये सिलसिला ऐसे ही सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हमारा आपके साथ बना रहेगा। अगर दोस्तों आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं, आप भी अपने फरमाइश की गीत हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना क्या है श्रोता साथियों, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहाँ से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं, वहाँ का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। तो जैसा कि दोस्तों फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम में शुरू हो चुका है, तो बढ़ते हैं पहली फरमाइश के गीत की ओर। पहली फरमाइश का गीत है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया है, फिल्म का नाम है रिफ्यूज, गीत के बोल है पंछी नदियां पवन के झोंके। फरमाइशकर्ता और भी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से छनुला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव जी। खंडवा मध्य प्रदेश से हैं सालिया डावर, हलीमा डावर, जिक्र डावर, आयशा खत्री, फातिमा खत्री, तबस्सुम खत्री जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं पंडरपुर से जाकिर मुलानी, सुबियान सलमा, मुमताज दिलसाद, नसीर भी पानी भी पाशा मुलानी जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं पंडरपुर से ही प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं पंछी नदियां पवन के झोंके।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा चल रहा है, शुरू हो चुका है, इसी बीच बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है, दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, फुर्सत नहीं। गीत के बोल हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। फिल्म का नाम है जीत और इस गीत को आवाज़ दी है सोनू निगम जी और अलका याग्निक जी ने। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत और भी हमारे दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बागपत से हैं आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान। खरगोन मध्य प्रदेश से हैं तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, सीमा वर्मा, अभिषेक वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समराज आर्यन और ही ऐशिका श्वेता वर्मा जी। बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी जी, अर्जुन भारती जी, अंजलि नितिन जगमोहन, सुधीर नितिन, शिषपाल अकेला जी, भुवनेश्वरी देवी जी। नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, परकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभिजी शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन जी शाह, राजेंद्र शाह, सुषमा कपूर जी। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और भी साथ ही जुड़ रहे हैं कश्मीर से फैजरा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। जुड़ना चाह रहे हैं नवा शहर से सुरेंद्र सानू, अनिता सांधु, रोहित सांधु, रितेश सांधु, शिक्षा सांधु, प्रतीक्षा सांधु और मेक्सी। नादेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूँगी। जुड़ना चाह रहे हैं श्रोता साथी कोकाबिलाई से। फिल्म का नाम है लॉफर। गीत के बोल हैं, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ कहीं। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में। नाम बताना चाहूँगी साथियों, उत्तम सिंह झंगेल, मोरर झंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष झंगेल, नंदिनी झंगेल, सुग्री कला से अमित शक्कुन, आरुषि, ओशिका आदित्य, अंजलि झंगेल और भी श्रोता साथी गाजियाबाद शिषपाल, अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी जुड़ रहे हैं। लखनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू जुड़ना चाह रहे हैं। रतलाम से जगदीश धाकर नायमा, रंजूबाई धाकर, युवराज सिंह धाकर, शिवांगी धाकर जी और भी साथी जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से ही बलकर्ण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, मुरली अमित वर्मा, सीमा वर्मा जी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी, दिशा गोस्वामी जी और भी साथी जुड़ रहे हैं। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अशिल विपुल कामड़े जी। येताला महाराष्ट्र से जुड़ रहे शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णय जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जी। बोरखेड़ा पितना मल से हैं विनोद मोड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मोड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार जी, दीक्षा कुश मोड़त जी। पोटाकला दुर्ग से संजय साहू, सुधा साहू, शशांक साहू, सीमा साहू जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दोस्तों के फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी साथियों। तेलीपाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, फिल्म का नाम है श्रोता साथियों बताना चाहूँगी। गीत के बोल हैं, 16 बरस की बाली उमर को सलाम। और गीत के और फिल्म का नाम है साथियों एक दूसरे के लिए। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बीबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से हैं मोहन सिंह राज, अनित राज, सुमित सोमू मानस राज। गंजुडवारा से हैं शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, फैजान खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। नेहरू चौक पैठन से सुरेश यादव, अनीता यादव, आरती, पूजा प्रसाद यादव, सोनल यादव, बीबी सिया यादव। राजकोट से जुड़ना चाह रहे हैं श्रोता साथी मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, प्रयागराज भट्ट जी। बक्सर बिहार से सफरुद्दीन अंसारी, खातून अंसारी, सुरुद रमेश साहू, सुरित जी।

डोंगराव बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोनामदीपा दानिश अंसारी जी। बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से एजेराज अंसारी, आसमा खातून अंसारी जी। मलकापुर महाराष्ट्र से हैं शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, सपिल धाड़े, अजय खिरोड़कर। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल दिव्यांशी विश्वकर्मा जी। सिरसा हरियाणा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक, सचिन रोहित शर्मा। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, 16 बरस की बालियों उमर को सलाम।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, पलारी छत्तीसगढ़ से आया है। गीत के बोल है, मेरी ज़िंदगी में अजनबी का इंतज़ार है, और गीत के बोल भी यही है श्रोता साथी, और फिल्म का नाम है अजनबी। पलारी छत्तीसगढ़ से श्रोता साथी इस गीत को जुड़ना चाह रहे हैं, नितेश कुमार देवांगन, प्रसाद देवांगन जी, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूँगी। साथियों जुड़ रहे हैं कुमार हेड़ा से, सहारनपुर से सैयद मसूर, साहिना हसन, अक्सर नाजमा, आफिया इब्राहिम, सद्दाम जी, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिण दले, इश्के दले, जीविका दले, सनिका दले, पुनावाले पुणे से हैं, पुणे से अजय सोनवानी, करिश्मा अविका, सायसा सुनने, विशाखा मंगलकर जी, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगन पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं ये, मलोट से हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीतरानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू जी, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसनीन मोहम्मद केफ अंसारी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, मेरी ज़िंदगी में अजनबी का इंतज़ार है।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है दोस्तों मुझसे दोस्ती करोगे। गीत के बोल हैं अनदेखी अनजाने सी। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, पटापरा छत्तीसगढ़ से हीरा मणिवर्मा, पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा, नोखेलाल वर्मा जी जुड़ना चाह रहे हैं, अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना जी जोधपुर राजस्थान से हैं, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं, गुलाम शाबिराही, मेराज जहाँ, ताजमद अंसारी जी और भी दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, कालेगांव से हैं, पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश और संतोष चंद, पांडुरंग कुम्हार जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं अनदेखी अनजाने सी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से। फिल्म का नाम है दोस्ताना, गीत के बोल ही बने चाहे दुश्मन जमाना। इस गीत की फरमाइश करता है रमेश चंद्र चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत जी। गंजडवारा से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। कलानौर से जुड़ना चाह रहे हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी डांगी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही बने चाहे दुश्मन जमाना। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने और किशोर कुमार जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजू द्वारा उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल हैं चल छैया छैया। इस गीत की फरमाइश करता है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदीर जी, राधा नामदेव जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशिद शेख, नाजियाना आशीष, शाहिद शेख। अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं जुमेद मुजावर, सभिया मुसावर, मिखाइल जी मुजावर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं हनुमानगढ़ से भाई प्रेम सिंह, सुखवीर काजल, लखवीर जी, राधा कृष्ण, श्रीमती सिंधु जी, प्रवीण, शीतल, नवीन और रंगीला जी, निशा और अनमोल जी, चिंकू मिंकू। बुलंदशहर से जुड़ना चाह रहे मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव सिंधी। खंडाला से जुड़ना चाह रहे हैं आकाश सरोदी और प्रिया सरोदी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं चल छैया छैया। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अस्तुपुरा जिला महू से। फिल्म का नाम है नसीब, गीत के बोल है मेरे नसीब में तू है के नहीं। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गांजीपुर से जुड़ रहे हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला जी आजाद। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे, धनोरी तेलीवाला सी, निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। नरवेल महाराष्ट्र से जुड़ रही हैं पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रही हैं सोपान ताड़वी, नारायण इगली, आशीष मेहकर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री रुजा सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना जी देशमुख। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं बदायूं से इर्शद खान, शायरा खान, रिफियो खान, सावरीन बेगम, आशाबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम जी खान और अरहान जी खान। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मेरे नसीब में तू है के नहीं। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बुलढाणा महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है विश्वात्मा, गीत के बोल हैं सात समंदर पार। इस गीत की फरमाइश करता है भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन जी पाटिल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं डाबकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। इसे भी जुड़ना चाह रहे खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, निट्टू लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडी कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रही हैं पीयू सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, भाविका जी सिक्का। इस गीत के अनुरोध करता है नवाशर पंजाब से गंगदीप थांती, दीप्ता कुमारी थांती, डॉक्टर प्रियंका थांती, डॉक्टर प्रियंक प्रशांत थांती, डॉक्टर प्रियम थांती, बेबी वामिका वानी जी थांती। इसी बीच जुड़ना चाह रहे एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे गंजुड़वारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रिहाना अंसारी, मोहम्मद फेक, अनवर मास्टर, लुभाना अंसारी, आलिया जी अंसारी। इस गीत की अनुरोध करता है अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोनी, योगिता हांगोनी, प्रियाली पार्थ जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोले हैं सात समंदर पार। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में है।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बुलढाणा महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती, गीत के बोल हैं साजन मेरा उस पार। इस गीत की फरमाइश करता है भगवान पाटिल, लक्ष्मी पाटिल, समर्थन दादा पाटिल, सानिका जी पाटिल और भी श्रद्धा साथी जुनाचार्य, नई बस्ती गंजडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल बेगम हाशमी, तोशीम हाशमी, तोइनूर जी हाशमी, कलीम अंसारी जी। इस गीत के अनुरोध करता है सदर बाजार कुरावली सी अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा, सोनम जी वर्मा। इसी बीच जुन्नाचार्य दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार, नरगिस जी खातून। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रदेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुन्नाचार्य भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मिलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजी बिट्टू, पीबी कुडलेश जी। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्र देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेमांश कुमार चंदन। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं साजन मेरा उस पार। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों अभी हमने लता जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे साजन मेरा उस पार ही मिलने को दिल पे करा रहे हैं। इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश सी। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन। गीत के बोल हैं गोरे ही कलैया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सोनू सुरेश, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे। भाटापारा छत्तीसगढ़ सी हिमकेश्वर शाहू, करण राहुल शाहू, चंपाजी शाहू इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं। झारखंड से अब्बास आलम, मजद अली, लाडली और निशा जी। इस गीत की अनुरोध करता है खंडाला से राजेश सेन, सुरेखा जी सेन, शुभम और अक्षय जी। पथरोड से जुड़ना चाह रहे हैं विजय अंबाटकर, सुनीता अंबाटकर, अक्षय अंबाटकर, राधिका अंबाटकर, ऋषिकेश जी अंबाटकर। इस गीत की अनुरोध करता है अकोट से विनायक भिंडे, श्रीमती मंगला भिंडे, विजय शुभम, पवन जरी और सजीव जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे मॉडल ट्यून कर्नल से सुधीर न्यूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, राम आशा जी और राम ईशा जी। जलालाबाद वेस्ट से जुड़ रहे हैं सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। जनकपुर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं जोन टिकिस्ट्रो, रोजी टिकिस्ट्रो, पर्ल टिकिस्ट्रो, विलिजी टिकिस्ट्रो। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागुरेडियो 90.8 FM पर।

गोरी है कलाइया मिला दू तुझे हरी हरी चूड़िया, गोरी है कलाइया मिला दू तुझे हरी।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोपर गांव से। फिल्म का नाम है नया दौर, गीत के बोल हैं आना है तो आ रहा हूँ। इस गीत की फरमाइश करता है पेंटर मतीन मसूदा दिया और दानिश खान। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रही है राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधांशी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ जी घोड़ानी। इस गीत के अनुरोध करता है लोर में चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। छत्रपति संभाजीनगर से जुड़ रहे हैं राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, शीतल राजेश, राशि राजेश। मुरादाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य जी कसाना। इस गीत के अनुरोध करता है यूपी से सूर्य चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सबो चौरासिया, सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, बाबू शिवा, शिवानी जी चौरासिया। इसी बीच जुड़ना चाह रहे अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुड़ानी, अर्चनाताई गुड़ानी, हीरामन शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभाजी गुड़ानी। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, छन्नूला श्रीवास, रंजन शाहू जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। बिलतारा छत्तीसगढ़ से और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो और मानस जी राज। मस्तानपुरा से जुड़ना चाह रहे हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। इस गीत के अनुरोध करता है बक्सर से जयराम बिंद, सीता मुन्नी, लाला साह, काजल और प्रदुषी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, संजुक्ता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। फिल्म का नाम है सनम बेवफा। गीत के बोल हैं, चूड़ी मजाना देगी कंगन मजाना देगी। इस गीत की फरमाइश करता है उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका सृष्टि, बन्नी आरुष, शौर्या दिनेश जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, मनीष वर्मा, रिहान खान, बेबी वेदई जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी। बस्तर से जुड़ रहे हैं पूनम नायडू जी, खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रही हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, चूड़ी मजाना देगी कंगन मजाना देगी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाक रेडियो 90.8 FM पर। और श्रोता साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
4: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपड़े कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलेस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
4: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार, बाजरा ज्वार रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू, बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो,
4: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि नौकरी के साथ साथ हुनर क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, जब भी हम किसी युवा से उसके सपने के बारे में पूछते हैं कशिश, तो अक्सर जवाब मिलता है मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, नौकरी जीवन को स्थिरता देती है, सम्मान देती है और आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है, लेकिन क्या केवल नौकरी ही सफलता की अंतिम मंजिल है? आज का दौर तेजी से बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और रोजगार की दुनिया भी लगातार नई चुनौतियां लेकर सामने आ रही है कशिश। ऐसे समय में श्रोताओं, केवल नौकरी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं रह गया।
0: बिल्कुल,
1: आज जरूरत है कि हम अपने भीतर ऐसे कौशल विकसित करें जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति दे।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में जैसा कि मनोरंजन करना हमारे श्रोता साथियों को बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना इसी गीत के साथ पहले दोस्तों को मनोरंजन करवाएं हम।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है, बात कर रहे हैं नौकरी के साथ साथ हुनर क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, एक सवाल के साथ अगर बातचीत की शुरुआत करें तो अगर आज आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाए तो क्या इसका मतलब आपका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है साथियों? शायद अगर जागृति जी ये सवाल जो है वो हमारे श्रोता साथियों को कुछ साल पहले पूछा जाता तो इसका जवाब हाँ होता।
1: जी हाँ,
0: लेकिन आज का समय बदल चुका है। आज दुनिया जितनी तेजी से बदल रही है, कई ऐसी नौकरियां जिनकी आज बहुत मांग है और आने वाले कुछ वर्षों में ये भी बदल सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथियों, नई तकनीकें आ रही हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई कामों का तरीका बदल रहे हैं। ऐसे में सिर्फ नौकरी होना काफी नहीं है, बल्कि अपने आप को लगातार बेहतर बनाना और नए नए हुनर सीखना भी उतना ही जरूरी हो चुका है। जागृति जी।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि हुनर का मतलब केवल कोई तकनीकी काम सीख लेना है, लेकिन वास्तव में हुनर का दायरा बहुत बड़ा है। अच्छा संवाद करना, सही समय का उपयोग करना, समस्याओं का समाधान ढूंढना, नेतृत्व करना, नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना, रचनात्मक सोच रखना और टीम के साथ मिलकर काम करना, ये सारी बातें हुनर में आती है।
0: जी हाँ,
1: कई बार हम देखते हैं कशिश कि दो लोगों के पास समान डिग्री होती है, लेकिन सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जिसके पास बेहतर कौशल होता है। यही कौशल व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान दिलाता है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हम हुनर शब्द को सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में सिलाई, मोबाइल रिपेयरिंग या कोई तकनीक का काम दिमाग में आता है। लेकिन श्रोता साथियों, हमारे लिए क्या ये सिर्फ हुनर है? बिल्कुल नहीं। हुनर श्रोता साथियों वो क्षमता होती है जो किसी व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है। जैसे कि अच्छा संवाद करना, समय पर काम को पूरा करना, टीम के साथ मिलकर काम करना, नई नई चीजें सीख लेना और मुश्किल परिस्थिति में शांत रहकर समाधान निकालना।
1: जी हाँ,
0: ये सभी श्रोता साथियों हुनर कहलाते हैं। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि डिग्री आपके ज्ञान का प्रमाण दे सकती है, लेकिन हुनर आपके व्यक्तित्व की पहचान बनाता है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ कशिश हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि दुनिया में कोई भी नौकरी हमेशा के लिए सुनिश्चित नहीं होती है।
0: बिल्कुल,
1: कभी आर्थिक परिस्थितियां बदल जाती है, कभी तकनीक बदल जाती है और कभी संस्थाएं अपने काम करने का तरीका बदल देती है। लेकिन याद रखिए श्रोताओं, हमारे पास कौशल है तो अवसरों की कमी नहीं रहती। हुनर ऐसा साथी है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है।
0: बिल्कुल,
1: वो हमें नई नौकरी दिला सकता है, अपना व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा दे सकता है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की ताकत भी दे सकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि आज लाखों युवा पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। कई लोगों के पास तो अच्छी डिग्रियां भी हैं जागृति जी, फिर भी सभी को मनचाही नौकरी क्यों नहीं मिलती?
1: बिल्कुल,
0: इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों स्किल गैप, यानी कि शिक्षा और व्यवहारिक कौशल के बीच का अंतर। जागृति जी, आज कई कंपनियां ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो केवल किताबों का ज्ञान न रखते हो बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में भी काम कर सके।
1: बिल्कुल,
0: वे देखते हैं श्रोता साथियों कि कोई उम्मीदवार टीम में काम कर सकता है या नहीं, वह नई नई चीजों को जल्दी सीख पाता है या नहीं, उनमें आत्मविश्वास कैसा होता है। और इसी कारण से जागृति जी, आज इंटरव्यू में केवल अंक नहीं बल्कि हमारा व्यवहार, हमारी सोच और हमारा कौशल भी देखा जाता है।
1: जी हाँ कशिश, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, हम बात कर रहे हैं कि नौकरी के साथ साथ हुनर क्यों जरूरी है, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी कि नौकरी के साथ साथ हुनर क्यों जरूरी है। गीत से पहले हमने जाना था हुनर आखिर क्या है, केवल डिग्री क्यों पर्याप्त नहीं है, नौकरी बदल सकती है हुनर नहीं, और साथ ही हमने अतिरिक्त हुनर किस तरह से अतिरिक्त आय दे सकता है इस पर भी बात की थी। यही हम बात करते हैं कशिश की, सीखना कभी हमें बंद नहीं करना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: दुनिया में सबसे बड़ी गलती ये है श्रोताओं कि हम सोच लें कि अब हमें सब कुछ आ गया है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। नई तकनीकें लगातार सामने आ रही हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेवाएं और आधुनिक उपकरण कार्य क्षेत्रों को बदल रहे हैं। ऐसे समय में जो युवा सीखते रहेंगे वही आगे बढ़ेंगे।
1: जी हाँ,
0: ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब हम उसे प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सके। स्पष्ट बोलना, ध्यान पूर्वक सुनना, दूसरों के विचारों का सम्मान करना और टीम में सहयोग करना आज हर क्षेत्र की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल,
0: अच्छे संवाद की क्षमता कई बार औसत ज्ञान वाले व्यक्ति को बड़ी सफलता दिला देती है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के डिजिटल युग में हुनर आय के नए अवसर भी प्रदान करती है। अनेक लोग श्रोता साथियों अपनी नियमित नौकरी के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षण, कंटेंट लेखन और वीडियो संपादन जैसे कई कामों में अपने हुनर को आजमाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है बल्कि भविष्य के लिए भी सुरक्षा बढ़ती है। जागृति जी, तकनीक के इस दौर में स्वयं को लगातार अपडेट रखना बहुत जरूरी है। AI जैसे श्रोता साथियों तकनीकें पूरी दुनिया को बदल रही है और आने वाले वर्षों में अनेक नई नौकरियां भी पैदा होंगी, कई पुराने कार्य समाप्त भी हो सकते हैं। इसलिए हमारे युवाओं को सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ साथ अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाता रहता है वही भविष्य में सफल रहता है। जागृति जी,
0: बिल्कुल, इसी के साथ हर नौकरी में चुनौतियां आती है, सफल वही होता है जो समस्या देखकर घबराता नहीं बल्कि समाधान खोजता है। कशिश, हम देखते हैं कि नेतृत्व की शुरुआत भी यहीं से शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में रास्ता निकालना सीख लेता है वो हर संस्था और समाज के लिए मूल्यवान बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम सभी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। अंतर केवल इतना है कि कोई इन घंटों का सही उपयोग करता है और कोई उन्हें व्यर्थ गवा देता है।
1: जी हाँ,
0: समय का सम्मान करना प्राथमिकता तय करना है और अनुशासन बनाए रखना एक ऐसा हुनर है जो हर दूसरे हुनर को और अधिक प्रभावी बना देता है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार हमारे पास ज्ञान और कौशल दोनों होते हैं कशिश, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण हम पीछे हट जाते हैं।
1: जी जी,
0: आत्मविश्वास वो शक्ति है श्रोताओं जो व्यक्ति को नई जिम्मेदारियां स्वीकार करने और कठिन परिस्थितियों में डटे रहने का साहस देता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए सकारात्मक सोच हमें हर चुनौती में अवसर देखने की दृष्टि देती है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की, तो किसी भी व्यक्ति के ज्ञान और हुनर का वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देता है जब उसके भीतर आत्मविश्वास होता है। जागृति जी, यदि किसी के पास उत्कृष्ट प्रतिभा है लेकिन स्वयं पर विश्वास नहीं है तो वह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर आत्मविश्वासी व्यक्ति सीमित संसाधनों में भी बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं है बल्कि अपनी मेहनत, अपनी तैयारी और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना है।
0: बिल्कुल,
1: सकारात्मक सोच व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब कोई काम पहली बार सफल नहीं होता जागृति जी, तब सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को दोबारा प्रयास करने का साहस देती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे प्रयास से होती है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में विशेषज्ञ नहीं बनता। यदि युवा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा नया सीखने का संकल्प लेंगे तो कुछ वर्षों बाद वही सीख उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसीलिए हमारे श्रोता साथियों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि श्रोता साथी, हुनर व्यक्ति को केवल रोजगार पाने योग्य नहीं बनाता बल्कि रोजगार देने योग्य भी बनाता है। यही आत्मनिर्भरता की असली पहचान है। हर वर्ष कम से कम एक नया कौशल जरूर सीखे, अपनी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करें, डिजिटल तकनीक से जरूर जुड़े, अनुभव से सीखने की आदत विकसित करें, असफलताओं को सीखने का अवसर समझें, पुस्तकों, कार्यशालाओं और अनुभवी लोगों से ज्ञान प्राप्त करें।
1: बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों आज की बातों से हम ये समझ पाए हैं कि आज का युग केवल नौकरी प्राप्त करने का नहीं बल्कि स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने का युग है। डिग्री श्रोता साथियों में अवसरों के द्वार तक पहुँचाती है, लेकिन हुनर जो है वो उन अवसरों को सफलता में बदलता है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, नौकरी हमें आय देती है जबकि कौशल हमें आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। बदलती दुनिया में वही युवा सबसे अधिक सफल होते हैं जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: यदि युवा नौकरी के साथ साथ अपने कौशल का विकास करते रहेंगे जागृति जी, तो वे किसी भी परिस्थिति में कभी पीछे नहीं रह पाएंगे।
0: जी हाँ,
1: वे नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे, नए अवसरों को पहचान पाएंगे और साथ ही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकेंगे।
0: बिल्कुल, इसलिए हम कह सकते हैं हमारे श्रोता साथियों को कि डिग्री हमें अवसर देती है लेकिन उन हुनर उन अवसरों को उपलब्धि में बदलता है। नौकरी हमें आज का सहारा देती है जबकि कौशल हमारे पूरे भविष्य को मजबूत बनाता है। इसलिए केवल नौकरी पाने का सपना मत देखिए, स्वयं को इतना सक्षम बनाइए कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आपका आत्मविश्वास और आपका हुनर हमेशा आपके साथ खड़ा है। याद रखिए, डिग्री अवसर का द्वार खुलती है लेकिन हुनर सफलता की राह बनाता है।
1: जी हाँ, तो इन्हीं बातों के साथ श्रोता साथियों, अब जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे पूरी हो चुकी है, समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो जागृति जी, कार्यक्रम से विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाते जाते सुनवा देते हैं श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की बातें जो भी रही है वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय से जो हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, बचपन जीवन का सबसे कोमल, सबसे सुंदर और सबसे सीखने वाला दौर होता है।
0: बिल्कुल,
1: इसी उम्र में कशिश बच्चे अपने व्यक्तित्व की नींव रखते हैं, रिश्तों को समझते हैं और दुनिया को देखने का नजरिया विकसित करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन आज के समय में एक ऐसी समस्या तेजी से बढ़ रही है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। वह समस्या है बच्चों का अपनी परेशानी किसी से न बताना और जरूरत पड़ने पर भी मदद मांगने में झिझकना।
0: बिल्कुल,
1: कई बार माता पिता कहते हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई और हमारे बच्चे ने हमें बताया तक नहीं। स्कूल में बच्चा किसी परेशानी से जूझ रहा होता है, कोई उसे तंग कर रहा होता है या कई बार पढ़ाई में कठिनाई आती है तो कोई डर उसके मन में बैठ जाता है या वह मानसिक तनाव महसूस करता है, लेकिन वह चुप रहता है। जब तक परिवार को सच्चाई पता नहीं चलती तब तक समस्या काफी बढ़ चुकी होती है।
0: बिल्कुल,
1: तो कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि बच्चों को मदद मांगने में झिझक क्यों होती है और इसे कैसे दूर करें।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी हम करेंगे हमारे श्रोता साथियों से आगे कार्यक्रम में, लेकिन जैसा कि शुरुआत में भी गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना पहले उसी दस्तूर को निभाते हुए यहाँ पर मनोरंजन किया जाए।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों को मदद मांगने में झिझक क्यों होती है और माता पिता इसे दूर करने के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि अंजलि जी आपने गीत से पहले बताया था कि कुछ ऐसी परेशानियां हो जाती है जिसके बारे में माता पिता को जब पता चलता है तो वे काफी आश्चर्यजनक महसूस करते हैं। और जैसा कि आपने बताया था कि बच्चे कई ऐसी चीजें हैं जो माता पिता को डर के कारण नहीं बता पाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों ये जो चुप्पी है वो केवल एक आदत नहीं है बल्कि कई बार ये बच्चे के मन में बैठे डर, असुरक्षा और विश्वास की कमी का संकेत होती है।
1: जी जी,
0: इसलिए श्रोता साथियों, हम सभी माता पिता को ये समझना होगा कि बच्चे मदद क्यों नहीं मांगते। हम उन्हें ऐसा भरोसा कैसे दें कि वे हर मुश्किल में सबसे पहले अपने माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद बड़े के पास आकर अपनी बात कहे।
1: बिल्कुल कशिश, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बच्चा कभी भी बिना कारण चुप नहीं रहता। उसके मन में कोई ना कोई डर जरूर होता है। कई बच्चों को लगता है कि यदि उन्होंने अपनी गलती बता दी तो उन्हें डांट पड़ेगी। कुछ बच्चों को डर तो होता है कि उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा।
0: बिल्कुल,
1: कई बच्चों को यह चिंता रहती है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें कमजोर समझेंगे, और यही डर कशिश धीरे धीरे उनके मन में बैठ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: वे अपनी समस्याओं को अपने भीतर ही दबाकर रखने लगते हैं। कई बार इस झिझक की शुरुआत घर से होती है। यदि बच्चा कोई छोटी सी गलती बताता है और उसे तुरंत डांट, सजा और अपमान मिलता है कशिश, तो अगली बार वह सच बताने से पहले कई बार सोचेगा।
0: बिल्कुल,
1: यदि बच्चा रोते हुए अपनी परेशानी लेकर आता है और उसे यह सुनने को मिलता है कि इतनी सी बात पर रो रहे हो, ये तुम्हारी ही गलती होगी, तो इसका असर उसके विश्वास को धीरे धीरे कम कर देता है।
0: जी जी,
1: उसे लगता है कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथ ही अगर बात करें तो ऐसे में श्रोता साथियों, हमें ये याद रखना होगा कि बच्चे का विश्वास एक दिन में नहीं बनता है, ये रोज रोज के व्यवहार से बनेगा। जब माता पिता अंजलि जी उसकी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनेंगे, उसकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और बिना डांटे उसकी बात समझने की कोशिश करेंगे, तभी बच्चा यह महसूस करेगा कि वह अपनी हर परेशानी किसी से साझा कर सकता है।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि अंजलि जी, आज का समय पहले से बिल्कुल अलग है। बच्चों की समस्याएं भी बदल चुकी हैं। पहले डर केवल स्कूल या मोहल्ले तक सीमित था, लेकिन आज मोबाइल और इंटरनेट के कारण बच्चों के सामने नई चुनौतियां देखने को मिल रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: कई बच्चे ऑनलाइन परेशान किए जाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल में बुलिंग का शिकार होते हैं, तो कुछ पढ़ाई के दबाव से तनाव में रहते हैं साथियों।
1: जी हाँ,
0: ऐसे समय में बच्चा चुप रह जाए तो समस्या और गंभीर हो सकती है। इसलिए परिवार का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चा बिना डर अपनी बात कह सके। साथियों,
1: जी बिल्कुल,
0: घर में आप ऐसा माहौल बनाए जहाँ रोज कुछ समय केवल बच्चों के लिए हो। उनसे श्रोता साथियों ये मत पूछिए कि आज तुम्हारे कितने नंबर आए, बल्कि ये पूछिए कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है, क्या आज कुछ ऐसा हुआ जिससे तुम खुश या दुखी हुए हो। अंजलि जी, ऐसे जो छोटे छोटे सवाल हैं वो बच्चों के मन का दरवाजा खोल देते हैं और बच्चे अपने मन की बात अपने माता पिता को ठीक ढंग से बता पाते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है। ये बातें आगे निरंतर यूं ही श्रोता साथियों के साथ अवश्य बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही कशिश श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि माता पिता को यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान केवल सलाह देना नहीं होता। कई बार बच्चे को केवल एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो बिना टोके उसकी पूरी बात सुन ले। जब बच्चा महसूस करता है कशिश कि उसकी बात को गंभीरता से लिया जा रहा है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह भविष्य में भी खुलकर बात करने लगता है। शिक्षकों की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल केवल श्रोता साथियों पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र भी है। यदि शिक्षक ऐसा वातावरण बनाए जहां बच्चे बिना डर के प्रश्न पूछ सकें, अपनी गलती स्वीकार कर सके, अपनी परेशानी साझा कर सके, तो बच्चे मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: किसी बच्चे की गलती पर पूरी कक्षा के सामने उसका मजाक उड़ाना या उसे अपमानित करना उसके भविष्य को गहरी चोट पहुंचा सकता है। इसके बजाय उसे अलग से समझाना और प्रोत्साहित करना बहुत ज्यादा प्रभावी होता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, अब यही अगर बात करें साथियों, तो हमें बच्चों को यह सिखाना होगा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी होती है। अंजलि जी, जैसे बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाना सामान्य बात है, ठीक वैसे ही किसी परेशानी में माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद बड़े से सलाह लेना भी सामान्य बात है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जो बच्चा सही समय पर मदद मांगना सीख जाता है वह जीवन की बड़ी समस्याओं का सामना भी अधिक समझदारी से कर पाता है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें यह महसूस कराना है कि चाहे परिस्थितियां जैसे भी हो, उनका परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा है।
0: जी हाँ,
1: यदि बच्चा गलती करता है तो केवल उसकी गलती मत बताइए साथियों, बल्कि उसे यह भी बताइए कि गलती सुधारने का रास्ता क्या है। यदि बच्चा डर कर अपनी बात छिपा लेता है तो उसे दोष देने के बजाय ये सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे सच बोलने का सुरक्षित माहौल ही नहीं मिल रहा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अंजलि जी, बच्चे जन्म से निडर या डरपोक नहीं

0: होते। उनका आत्मविश्वास, उनका साहस और उनकी खुलकर बात करने की आदत परिवार, स्कूल और समाज के वातावरण से विकसित होती है।
1: जी हाँ।
0: यदि श्रोता साथियों हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी समस्याएं छिपाने के बजाय समय पर उन्हें साझा करें, तो हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां उन्हें डर नहीं भरोसा मिले, निर्णय नहीं समझ मिले और डांट नहीं बल्कि संवाद मिले।
1: बिल्कुल कशिश, हमें ये भी याद रखना होगा कि जिस बच्चे को ये विश्वास होता है कि मेरे अपने मेरी बात सुनेंगे, वही बच्चा जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही समय पर मदद मांगने का साहस जुटा पाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए बच्चों को केवल मजबूत बनने की सीख मत दीजिए, बल्कि उन्हें यह भी सिखाइए श्रोता साथियों कि जरूरत पड़ने पर मदद मांगना भी ताकत की पहचान है, कमजोरी की नहीं। हम ऐसा बचपन बनाएं जहां बच्चों के मन में डर नहीं विश्वास हो, चुप्पी नहीं संवाद हो और अकेलापन नहीं अपने अपनों का साथ हो।
0: बिल्कुल।
1: यही एक सुरक्षित, आत्मविश्वासी और खुशहाल बचपन की सबसे मजबूत नींव है।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हर बच्चा अपने मन में अनेक भावनाएं, सवाल और उलझने लेकर बड़ा होता है। कई बार वह अपनी परेशानियों को शब्दों में नहीं कह पाता, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी चुप्पी और उसके चेहरे के भाव बहुत कुछ कह देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यदि हम इन संकेतों को समय रहते समझ लें तो कई बड़ी समस्याओं को शुरुआत में ही रोका जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए बच्चों की बात केवल सुनना ही नहीं बल्कि उसे समझना भी उतना ही आवश्यक है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे साथियों से यही कहना चाहेंगे कि साथियों, बच्चों को सबसे बड़ा उपहार महंगे खिलौने या सुविधाएं नहीं, बल्कि ऐसा विश्वास देना होता है कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने मन की बात बिना डर के निडर होकर कह सके।
1: जी जी।
0: जब बच्चों के मन के दरवाजे संवाद से खुलते हैं ना अंजलि जी, तभी उनके जीवन के रास्ते भी आत्मविश्वास, सुरक्षा और सफलता की ओर खुलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में श्रोता साथियों, हम हर बच्चे के जीवन में ऐसे भरोसे का दीप जलाएं जो उसे हर अंधेरे में सही रास्ता दिखाता रहे।
1: बिल्कुल। तो कशिश, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत हो गई है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन और हमारी बातें अब यही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमारा वारा अमरा हित भाई बुनों ने आपनी बोन अंजलि नू राम राम। किसान भाई बोन आप हम रे हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणेमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनो अमे अमारे टेम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाते। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक बातचीत नु विषय है कि आपणे मिश्रित खेती नु हूँ महत्व है ने आ खेती आपणे हेते करी शका। तो आना विषय माते भाई बुनो अमारी आप तकी कार्यक्रम में घणा कनी वाते थाएंगा, पण कार्यक्रम शुरू कर इने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते। तो भाई बुनो आप हमरता रहेजू आपड़ू रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: सर नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: जी धन्यवाद।
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है मिश्रित खेती के महत्व को लेकर। हम देखते हैं कि समय समय पर हम हमारे श्रोता साथियों से कुछ महत्वपूर्ण ऐसे विषय होते हैं जिन पर लगातार चर्चा करते रहते हैं और इस विषय पर भी हम बहुत सी बार हमारे श्रोता साथियों से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये बुवाई का जो समय है इसमें अगर इस विषय पर हम हमारे श्रोता साथियों से बातचीत करें तो वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यही वो समय है जब मिश्रित खेती के माध्यम से हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो आप कार्यक्रम में हमें सबसे पहले यही बताइए कि मिश्रित खेती क्या है।
1: जी, तो देखिए अगर मिश्रित खेती की हम बात करते हैं तो मिश्रित खेती का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप जो है आपके जो खेत में है जो फसलें उगाए, इसके साथ साथ जैसे हम मिश्रित खेती की जहाँ बात होती है वहाँ आपका पशुपालन आता है, आपकी बागवानी है, आपकी सब्जी बाड़ी है, पोषण बाड़ी है, आप जो आपके पशु है उनके लिए चारा उत्पादन है या मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, तो ये सारी चीजों को अगर अपनाते हैं तो उसको हम मिश्रित खेती मानते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह की जो खेती है वो बहुत ही लाभदायक होती है। तो इस तरह की खेती करने से आपको बताऊं कि आपके आय के स्रोत है वो काफी बढ़ जाते हैं और अलग अलग तरह से आपकी आय आती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फायदा ये है कि आपके घर में जितनी डाइवर्सिटी होगी, जितनी जैव विविधता होगी, उतना ही आपका जो घर का जो परिवार का है पोषण है वो काफी सुरक्षित और जो है पौष्टिक होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो इन चीजों को देखते हुए मिश्रित खेती है वो बहुत ही लाभदायक होती है। दूसरा अगर मिश्रित खेती की बात करते हैं तो इसमें एक तो जो उत्पादन है वो आपका बढ़ता है और इसमें कहीं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हुए वो भी कम पड़ते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और दूसरी दृष्टि से हम देखें तो मिट्टी की पोषकता भी बढ़ती है। तो अगर हम बात करते हैं कि मिश्रित खेती आवश्यक क्यों है, तो यहाँ पे एक तो क्या है कि जलवायु परिवर्तन जो है आप देख रहे हैं अभी काफी ज्यादा हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: जिससे कभी वर्षा होती है कभी नहीं होती है, कहीं हो रही तो जहाँ बाढ़ आ रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही है वर्तमान में।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा इसका जो प्रभाव ये है कि जब जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो ये हमारी खेती से जुड़ा हुआ भी एक महत्वपूर्ण वो होता है। तो जैसे रासायनिक का उपयोग है ये हो रहा है, तो जब भी हम बात करते हैं तो इसमें क्या कि किसानों की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता है वो कम हो जाती है और उनके सामने चुनौती खड़ी हो जाती है। तो इसलिए ये आवश्यक है अगर मिश्रित खेती करते हैं तो आपके जो एक तो जो घर का जो आपकी आय है उसमें तो बढ़ोतरी होगी, दूसरा जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस पे जो है जो कुप्रभाव है वो नहीं पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ में जो आगे चलकर आप देखेंगे तो आपकी फसल में अगर जलवायु परिवर्तन है, अगर आपने जैव विविधता ज्यादा है, आपके पास सारी चीजें हैं, मिश्रित खेती है, तो आपको ये निश्चित होता है कि कुछ तो आपको मिलेगा।
0: बिल्कुल सर।
1: नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर जलवायु परिवर्तन है या वर्षा अधिक हो गई, अगर आपने एक ही प्रकार की खेती की अगर वो नष्ट हो गई तो फिर आपके रास्ते बंद हो जाएंगे आय के।
0: बिल्कुल।
1: और बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है।
0: जी हाँ बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने हमें बताया कि मिश्रित खेती क्या है और ये क्यों जरूरी है। नहीं सर, अब हम हमारे श्रोता साथियों को मिश्रित खेती के लाभ के बारे में बताना चाहेंगे। तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख लाभ हैं जो मिश्रित खेती करने से हमें मिलते हैं।
1: जी, तो देखिए मिश्रित खेती की बात करते तो सबसे पहले फसल, अगर फसल में आपकी विविधता होगी, अलग अलग फसलें होगी, तो आपको अलग अलग आय के स्रोत होंगे जिसमें आपके खाने के लिए होगी और कुछ बेचने के लिए भी होगी। दूसरा हम देखते हैं कि आपके पास पशुपालन है तो आपका दूध का उत्पादन होगा, आपके पास सब्जी है तो आप घर में खाएंगे और अतिरिक्त होगी उसको आप सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अगर मुर्गी पालन होगा तो अंडे और मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, वो आप सेल भी कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो। तो इसके अलावा इनसे क्या है कि एक अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, सबसे मुख्य जो लाभ वो ये है। दूसरा है कि पोषण की दृष्टि से हम देखते हैं तो परिवार की पोषण सुरक्षा है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: जिसमें जैसे अनाज है, दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, अंडे हैं, दूध है, तो ये सारे जो मिलके हैं जो संतुलित भोजन बनाते हैं और वो भोजन वो अपने थाली में होगा तो आपके परिवार को जो भोजन मिलेगा उससे कई प्रकार की बीमारियां हैं या आपके जो कुपोषण जैसी समस्याएं हैं वो आपके आसपास भी नहीं आएगी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये पोषण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है खेत के लिए हम देखते हैं तो जितना जो हमारी हेल्थ होती है हमारा स्वास्थ्य होता है, वैसे ही मृदा का भी एक स्वास्थ्य होता है
0: जी जी।
1: तो उसकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि जो आप मिश्रित खेती करते हैं, जैसे गोबर प्राप्त हो रहा है तो आपको खाद मिल जाएगा, आपका कचरा हो रहा है तो आपकी मल्चिंग या फिर आपके खेत में जो है उसका खाद मिल जाएगा। आप जो अलग अलग प्रकार की अगर फसलें करते हैं तो कार्बन की जो मात्राएं हैं वो आपकी मिट्टी में बढ़ जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा, आप जैविक तरीके से हम जब करते हैं तो मिट्टी का पोषण बढ़ता है और उससे आपका उत्पादन भी बढ़ता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि मिट्टी की उर्वरकता के लिए मिश्रित खेती करनी चाहिए
0: जी जी।
1: इसके जो साथ में है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो है हमारा संसाधन, कि अगर आप मिश्रित खेती करते वो भी हमारे परंपरागत तरीके से, तो ये जो जलवायु परिवर्तन है उस पे जो प्रभाव है गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस दृष्टि से आपकी फसल को या मिश्रित खेती को नुकसान भी नहीं होगा
0: जी जी।
1: तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि हम परंपरागत और प्राकृतिक संसाधन है उनका बेहतर उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मिश्रित खेती की बात करते तो बैल आपके पास होंगे, पशु आपके पास होंगे, आप उसे खाद बना के डालेंगे, इसके साथ में जो है आपके अलग अलग प्रकार की जो चीजें होंगी वो होगा, तो आपके जो है बाहरी संसाधन इसमें नहीं होंगे, क्योंकि बाहरी संसाधन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, गाय है, मुर्गियां हैं, तो ये सब अगर है तो उसमें आपको बाहरी निर्भरता खत्म हो जाएगी
0: जी जी।
1: दूसरा है कि जैसे हमने बात की थी कि बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, कि हमारे शरीर को और हमारे जो क्लाइमेट को है वो जैव विविधता बहुत जरूरी है, उसको बचाना हमारे लिए जरूरी है
0: जी।
1: तो जब हम मिश्रित खेती करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि जो जैव विविधता वो काफी हो जाती है हमारे पास, और उससे पोषण के साथ साथ में हम पूरे क्लाइमेट का भी रक्षा करते हैं, तो ये भी जरूरी है। दूसरा है कि कम लागत, जब हम मिश्रित खेती करते हैं तो हमारी लागत है वो बहुत कम होती है
0: जी जी।
1: क्योंकि आपको बाहर से खाद बीज नहीं लाना पड़ेगा, आपको दूध नहीं लाना पड़ेगा, आपको सब्जियां नहीं लानी पड़ेगी, आपको फल नहीं लाने पड़ेंगे, तो अगर ये सब नहीं लाएंगे तो आपकी आय में बचत होगी और आपकी जो बचत है वो बढ़ेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि सर आप हमें बता रहे हैं कि मिश्रित खेती के कई सारे लाभ हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है
1: जी।
0: यही सर, मिश्रित खेती में क्या क्या शामिल किया जा सकता है?
1: देखिए, जब हम नाम लेते हैं मिश्रित खेती तो हमें समझ में आता है कि बहुत सारे कुछ चीजें होगी जिसका मिश्रण होगा। तो यहाँ पे आप अनाज है, दालें हैं, तिलहन की खेती है, इसमें आपकी पोषण वाटिका है जिसमें सब्जियां हैं, फलदार पौधे हैं जैसे बहुउद्देशी पौधे हैं वो आप लगा सकते हैं, गाय भैंस बकरी है, भेड़ है, मुर्गियां हैं या बतख पालन, और कई जो क्षेत्र है वहाँ पे जैसे मधुमक्खी पालन होता है।
0: बिल्कुल।
1: और अलग अलग प्रकार का चारा उत्पादन, और हमारे जो गोबर खाद से बर्मी कंपोस्ट करना, उकेड़ा जो है खाद बनाना, जल संरक्षण जैसे खेत तालाब की हम बात करते हैं, स्थानीय बीजों का संरक्षण जो हम बात करते हैं कि हमारे परंपरागत बीज है वो जलवायु से लड़ने में काफी सक्षम होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इन सारी चीजों को हम जो है मिश्रित खेती में शामिल कर सकते हैं
0: जी हाँ। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम में आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को बताया है, ये समुदाय इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं अपनी?
1: समुदाय की हम बात करें तो इसमें बात ये है कि जैसे प्रत्येक परिवार है कम से कम 5 से 7 प्रकार की जो फसलें हैं वो उगाए।
0: बिल्कुल।
1: तो ये आपका एक प्रयास रहेगा, तो इससे आपकी घर की पोषण सुरक्षा बढ़ेगी, इसके साथ में पोषण वाटिका विकसित करें ताकि बाहरी निर्भरता आपकी खत्म हो जाए
0: जी हाँ।
1: और वो पूरे समुदाय स्तर पर आप इसको करें। इसके साथ ही है जो पशुपालन और जो हम बात करते हैं जैविक खाद है उसका निर्माण करें, आप चाहे उकेड़े के माध्यम से करें चाहे बर्मी कंपोस्ट करें।
0: बिल्कुल।
1: वर्षा जल का संरक्षण इसमें शामिल किया जा सकता है, रासायनिक खेती की जो निर्भरता उसको बिल्कुल कम करें और जैविक को बढ़ावा दें हमारे क्षेत्र में, हमारे समुदाय में, हमारे परिवारों में, और हमारे जो सीख और अनुभव है वो एक दूसरे के साथ साझा करें।
0: बिल्कुल।
1: ताकि हर परिवार जागरूक होके इस प्रणाली को अपनाए।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे बातें ढेर सारी हो गई हैं, अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि मिश्रित खेती केवल एक कृषि करने का ही पत्ती नहीं है, इसमें हमारे जो समग्र जीवन शैली है और किसान के लिए आर्थिक सामाजिक हर दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, और हम जलवायु को बचाने का एक प्रयास करते हैं, तो मैं कहूंगा सभी किसान भाई इसको अपनाएं और हमारी आपकी पोषण सुरक्षा और जैव विविधता को भी बचाएं।
0: बिल्कुल। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया
1: जी। धन्यवाद।
0: ભાઈન પૂનુ, જેમ કે હવે આપણે વેસમે માંગીલાલજી જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હે. એણે આપણને બતાડ્યું કે મિશ્રિત ખેતી શું કહેવાય હે, આ કેમ જરૂરી હે, આનાથી આપણને કયા કયા લાભ થાય હે ને મિશ્રિત ખેતી મેં આપણે કઈ કઈ ચીજને શામિલ કરી શક. તો આશા કરો હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું. તો સૂટા તો પડ પણ સાથે પહેલા હમરી લઈ કોર ગીત ને મોરે પડો સૂટા.

भाई बोनो, घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था।

द्वारा जनहित में प्रसारित। भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है पानी की हर बूंद स्वराज की पूंजी।
0: बिल्कुल
1: कहा गया अंजलि, जैसे कि जल है तो कल है, ये केवल एक नारा नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी है। जिस प्रकार एक एक रुपए को जोड़कर हम बड़ी पूंजी तैयार करते हैं, उसी प्रकार पानी की एक एक बूंद मिलकर जीवन, खेती, प्रकृति और समाज की सबसे बड़ी पूंजी बनती है।
0: बिल्कुल,
1: जिस राष्ट्र ने अपने जल को बचा लिया उसने अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया, और जिसने जल को व्यर्थ बहा दिया उसने विकास की नींव को कमजोर कर दिया।
0: बिल्कुल जागृति जी, सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज तब साकार होता है जब हर नागरिक अपने संसाधनों के प्रति जिम्मेदार बने।
1: बिल्कुल,
0: पानी प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है और इसी की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसलिए कहा जा सकता है कि पानी की हर बूंद स्वराज की पूंजी है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय पर हमारी बातें जरूर रहने वाली है, लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
2: छुप गए।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत आपको करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं, पानी की हर बूंद स्वराज की पूंजी है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, अगर पानी स्वराज की पूंजी क्यों है, इसको लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं। तो साथियों, जैसा कि जल के बिना जीवन की कल्पना तो असंभव ही है।
1: बिल्कुल,
0: चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी, वनस्पति, कृषि, सभी का आधार जल ही है। अगर किसी गांव में पर्याप्त जल उपलब्ध है तो वहां खेती बहुत अच्छी होती है।
1: बिल्कुल,
0: रोजगार बढ़ता है, पलायन कम होता है और लोगों का जीवन समृद्ध बनता है। और यही आत्मनिर्भरता स्वराज की पहचान भी है।
1: बिल्कुल सुकृति जी, आज देश के अनेक हिस्सों में जल संकट गहराता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: भूजल का जो स्तर है वो लगातार नीचे गिर रहा है। हम देखते हैं कि नदियां दूषित हो रही हैं, तालाब समाप्त होते जा रहे हैं और वर्षा का जो पानी है वो बहकर चला जाता है। श्रोता साथियों, यदि आज हमने जल संरक्षण नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि जल संरक्षण केवल पानी बचाने का कार्य नहीं है जागृति जी, बल्कि भविष्य को बचाने का अभियान है। जब हम वर्षा जल का संग्रह करते हैं, रिसाव रोकते हैं, तालाबों का संरक्षण करते हैं और पानी का सोच समझ कर प्रयोग करते हैं, तब हम आने वाले वर्षों के लिए जल की पूंजी तैयार करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, और जैसे कि महात्मा गांधी जी का भी सपना था कि गांव आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर गांव की पहली आवश्यकता होती है पर्याप्त जल। जहां खेतों में पानी होगा श्रोताओं, वहां किसान खुशहाल होगा। जहां किसान खुशहाल होगा वहां गांव समृद्ध होगा, और जहां गांव समृद्ध होंगे वहीं सच्चे स्वराज की नींव मजबूत होगी। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे गांवों ने सामूहिक प्रयास से तालाबों का पुनर्जीवन किया है।
1: जी जी,
0: चेक डैम बनाए हैं, वर्षा जल संग्रहण को अपनाया है, जल संकट से बाहर निकलने का सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है। और ये सारी बातें बताती है कि जब समाज एकजुट होकर काम करता है तब असंभव भी संभव हो जाता है।
1: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं कि इसमें हर नागरिक की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सरकार की योजनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार के भरोसे जल संरक्षण संभव नहीं है। हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, जैसे कि नल खुला न छोड़ें, वर्षा जल का संचयन करें, पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। इसी के साथ श्रोता साथियों, तालाब, कुएं, बावड़ियों की सफाई करते रहें नियमित तौर पर, और बच्चों को जल संरक्षण का महत्व सिखाएं।
0: जी हाँ,
1: खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे आधुनिक सिंचाई तकनीकी को हमें अपनाना होगा, और जल स्रोतों में कचरा और गंदगी नहीं डालनी है। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे प्रयास होते हैं जागृति जी, जो बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बता रहे हैं कि पानी की हर बूंद स्वराज की पूंजी होती है, तो श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा साथी होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर युवा जल संरक्षण का संकल्प लेंगे तो गांव-गांव में जल क्रांति लाई जा सकती है। स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संस्थानों के माध्यम से जल जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग कर हम जल को बचाने का संदेश हर घर तक पहुँचा सकते हैं। इसी तरह महिलाओं की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। घर में पानी के उपयोग का सबसे बड़ा दायित्व महिलाओं पर होता है। आज हम देखते हैं कि कोई भी कार्य करना होता है तो घर की महिलाएं करती है, और अगर घर की महिलाएं पानी को बहा देंगी, बेफालतू का पानी अगर व्यर्थ जाएगा तो हो सकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को पानी देखने तक भी न मिले। इसलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जल संरक्षण में हमारी जो महिलाओं की भूमिका होती है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: जी,
0: अगर प्रत्येक परिवार पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करे तो लाखों लीटर पानी प्रतिदिन बचाया जा सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है। आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, हम आज जान पा रहे हैं कि पानी की हर बूंद स्वराज की पूंजी क्यों है। यहीं अब बात आती है जागृति जी, जल और पर्यावरण की। तो हम देखते हैं कि जल संरक्षण का सीधा संबंध पर्यावरण संरक्षण से है।
1: बिल्कुल,
0: अधिक पेड़ होंगे तो वर्षा भी बेहतर होगी, भूजल का स्तर सुधरेगा, नदियां जीवित रहेंगी। इसलिए जल बचाना और वृक्ष लगाना दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए श्रोता साथियों, जल बचाने के कुछ सरल उपाय हैं जो हम सभी को अपनाने चाहिए। जैसे कि ब्रश करते समय नल खुला न छोड़ें। बहुत सी बार हम देखते हैं कि हम हाथ धो रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं, और बहुत सी बार बर्तन साफ करते समय भी हम नल को बहुत देर तक खुला छोड़ देते हैं। इससे हम देखते हैं जागृति जी कि बहुत सारा पानी व्यर्थ चला जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो हमें ध्यान रखना है कि जरूरत के हिसाब से ही हम पानी का प्रयोग करें। वाहन धोने में भी पाइप की बजाय बाल्टी का प्रयोग करें, वर्षा जल का संग्रहण करें, रिसते हुए नलों की तुरंत मरम्मत करें। घरेलू उपयोग के लिए जो पानी का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका पुनः उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने घर के आसपास में पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पोषण वाड़ी लगा सकते हैं, जिससे वो पानी जो है वो व्यर्थ न बहकर हमारे ही काम आएगा।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, खेतों में पानी की आवश्यकता के अनुसार हमें सिंचाई करने की जरूरत है।
1: जी हाँ अंजलि, और सच्चा स्वराज केवल अधिकार मांगने से नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने का भी नाम है। श्रोता, जब हर नागरिक की समझ जाएगा कि पानी केवल उसका नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा संपत्ति है, तो जल संरक्षण जन आंदोलन बनेगा। स्वराज का अर्थ है अपने संसाधनों की रक्षा करना, उनका न्यायपूर्ण उपयोग करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण करना।
0: बिल्कुल,
1: कल्पना कीजिए श्रोताओं कि यदि हर परिवार प्रतिदिन केवल 10 लीटर पानी बचाएगा तो एक गांव में 1000 लीटर और पूरे देश में करोड़ों लीटर पानी प्रतिदिन सुरक्षित किया जा सकता है।
0: जी जी,
1: और यही छोटी छोटी बूंदे भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बनती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि पानी केवल प्रकृति का उपहार नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। आज जो पानी हम बचाएंगे वही कल खेतों को हरियाली देगा, पशुओं को जीवन देगा, घरों की जरूरतों को पूरा करेगा और गांव को आत्मनिर्भर बनाएगा। श्रोता साथियों, जल संरक्षण किसी एक व्यक्ति या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा भागीदारी का विषय है।
1: बिल्कुल,
0: जब हर परिवार, हर किसान, हर युवा और हर बच्चा पानी की एक एक बूंद का महत्व समझेगा, तब जल संकट का समाधान भी हमारे अपने प्रयासों से संभव होगा।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा स्वराज तभी मजबूत होगा श्रोता साथियों, जब हमारे गांव अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण स्वयं करेंगे। वर्षा जल का संग्रह, तालाबों और कुओं का पुनर्जीवन और जल का सोच समझकर उपयोग, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार, ये केवल अच्छे काम नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर और समृद्ध समाज की पहचान है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए श्रोता साथियों, हम सभी को पानी की हर बूंद को बचाना है, क्योंकि हर बूंद में जीवन है और हर बूंद में भविष्य है, और हर बूंद में हमें सच्चे स्वराज की ओर एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है।
1: बिल्कुल अंजलि, इस तरह हम कह सकते हैं कि पानी केवल हमारी आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का अधिकार है। अगर हम आज जल की एक एक बूंद का सम्मान करेंगे तो कल हमारी धरती हरी भरी रहेगी, खेत लहलहाएंगे, नदियां निर्मल बहेंगी और जीवन खुशहाली से भर जाएगा। लेकिन यदि हमने लापरवाही की तो आने वाली पीढ़ियां हमसे यही प्रश्न करेंगी कि जब समय था तब हमने पानी को क्यों नहीं बचाया। श्रोताओं, सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था का विषय नहीं है, ये हमारी सोच का विषय है, हमारी जिम्मेदारी का विषय है और हमारे व्यवहार का परिचायक है। जब हर नागरिक की समझ लेगा अंजलि कि पानी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा पूंजी है, तभी स्वराज का वास्तविक अर्थ साकार होगा।
0: जी,
1: जल संरक्षण कोई सरकारी अभियान नहीं है श्रोताओं, बल्कि जन जन का संकल्प बनना होगा। जब हर घर जल बचाने का केंद्र बनेगा, जब हर गांव अपने तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित करेगा, जब हर किसान पानी की हर बूंद का सदुपयोग करेगा और हर बच्चा जल संरक्षण का संदेश वाहक बनेगा, तब भारत वास्तव में आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए श्रोताओं, इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने केवल अपने लिए नहीं

0: बल्कि आने वाले कल के लिए भी कार्य किया है। आज हमारे सामने वो अवसर है कि हम अपनी छोटी से छोटी आदत से एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
1: जी जी,
0: एक बंद किया गया नल, एक लगाया गया पौधा, एक बचाई गई बूंद और एक जागरूक किया गया व्यक्ति, यही वे छोटे छोटे कदम है जो स्वराज की मजबूत नींव बनते हैं। अंजलि,
1: बिल्कुल,
0: मैं पानी की हर बूंद का सम्मान करूंगा, ऐसा हमें संकल्प लेना होगा, अपने मन में ठानना होगा श्रोता साथियों कि हम उसे व्यर्थ नहीं बहने देंगे। वर्षा जल का संरक्षण करेंगे, जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे और अपने परिवार, समाज तथा आने वाली पीढ़ियों को जल बचाने के लिए प्रेरित करेंगे।
1: जी जी,
0: क्योंकि पानी की हर बूंद पानी नहीं बल्कि जीवन, समृद्धि, आत्मनिर्भरता और सच्चे स्वराज की सबसे अमूल्य पूंजी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि पानी केवल प्रकृति का उपहार नहीं बल्कि जीवन, विकास और स्वराज की अमूल्य पूंजी है।
0: बिल्कुल,
1: इसकी प्रत्येक बूंद में किसान की मुस्कान, बच्चों का भविष्य और प्रकृति की हरियाली और राष्ट्र की समृद्धि छिपी हुई है। हम सब मिलकर यह संकल्प ले सकते हैं कि जल की एक एक बूंद का हमें सम्मान करना है, उसे व्यर्थ नहीं बहने देना है और जल संरक्षण को अपने जीवन का संस्कार बनाना है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, याद रखिए कि जब बूंद बूंद बचेगी तभी धरती मुस्कुराएगी, जब धरती मुस्कुराएगी तभी गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और जब गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तभी सच्चे स्वराज का सपना साकार होगा।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए पानी की हर बूंद को स्वराज की पूंजी माने, उसे बचाएं, संजोएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी जिम्मेदारी है और यही सच्चे स्वराज की सबसे मजबूत नींव है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की, जाना पानी की हर बूंद स्वराज की पूंजी किस तरह से है। अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बूंद बूंद से जीवन है, बूंद बूंद से विकास है, बूंद बूंद से समृद्ध किसान है, बूंद बूंद से खुशहाल परिवार है,
1: बिल्कुल
0: बूंद बूंद से सुरक्षित भविष्य है और बूंद बूंद से ही सच्चे स्वराज का निर्माण है। पानी को केवल संसाधन नहीं अपनी सबसे बड़ी पूंजी माने और उसके संरक्षण को अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य बनाए, यही सच्चे स्वराज की पहचान है, यही राष्ट्र के प्रति हमारी सच्ची सेवा है और यही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे अमूल्य विरासत होगी।
1: बिल्कुल
0: इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आपके साथ विदा लेते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूं है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम घूमर हमर वावरी अमर हिते बोन ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवे बोनो आप सब हमले रिया हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में।
1: होवे बहन बोनो लेने हासिल थे गया हो कार्यक्रम घूमर ने लेने एक नया विषय ने हाथे मनीषा बोन। आज आपड़े कार्यक्रम में बहन बोनो तो की बातचीत विषय है की आपड़ी जो बोन है ये अवड़े ना टाइम में ऑनलाइन घना एवं काम करी रही है जिन तक की ई खुद ने आत्मनिर्भर बनावी सके। तो ई ऑनलाइन जे काम करी रही है इनमें सुरक्षा नु हरते ध्यान राखी ने कया एवं सुरक्षित अवसर है जे एना ने बल्ले घना जरूरी है ई हंगरी वाते आज अपने कार्यक्रम में करवा वारा हा। पण कार्यक्रम नी शुरुआत में अपनी भाईन बोनो ने हमरावी दा गीत ने मोरे कर अपनी वाते
0: હવે અંજલી બોન તો ભાઈ બોનો હમળતા રેજો આપણો રેડિયો આપણી વાતે વાગડ રેડિયો 90.8 FM માં

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को
4: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं ये सुरक्षा है सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं
3: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी महिलाओं के भूमि अधिकार क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

साथियों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जवाब मिलने तक परेशान करते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार सोचकर खुद ही बड़ा बना देते हैं। कभी कभी समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी सोच उसे बना देती है। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फॉर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारेश्वर, लेकर हाजिर हो चुकी हूं श्रोता साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो जीवन की उन बातों को समझने की कोशिश करता है जो अक्सर हमारे आसपास तो होती हैं, लेकिन हमारी नज़र उन पर कम जाती है। आज का विषय है, ज्यादा सोचना ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जिससे शायद हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में जुड़ा है, चाहे वह छात्र हो, किसान हो, गृहिणी हो, युवा हो या बुजुर्ग। कभी न कभी हम सभी किसी बात को लेकर इतना सोचने लगते हैं कि वह सोच हमारी शांति छीन लेती है। तो आज कार्यक्रम में हमारी आपसे इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला ये गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ज्यादा सोचना ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। जी हाँ श्रोता साथियों, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने की शक्ति दी है। यही शक्ति हमें निर्णय लेने, भविष्य की योजना बनाने और समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है। लेकिन श्रोता साथियों, जब यही सोच नियंत्रण से बाहर हो जाती है ना, तब वह मददगार नहीं बल्कि बोझ बन जाती है। कई बार हम किसी छोटी सी बात को लेकर घंटों, दिनों और कभी कभी महीनों तक सोचते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल तो न हो जाऊं। इन सवालों का श्रोता साथियों कभी भी कोई भी अंत नहीं है। किसी ने कहा है कि सोच हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोच हमें वहीं खड़े कर देती है। इसलिए ज्यादा सोचने की आदत को हमें खुद से दूर करना है। और जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है उसमें ये आदत कैसे बनती है, इस बारे में हम बात करें तो दोस्तों, अधिक सोचने की शुरुआत अक्सर चिंता से होती है। जब हमें किसी बात का डर होता है तब हमारा मन बार बार उसी विषय पर लौटता है और धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। कुछ लोग हर निर्णय से पहले इतना सोचते हैं ना श्रोता साथियों कि निर्णय ही नहीं ले पाते। कुछ लोग बीते हुए समय की गलतियों को बार बार याद करते रहते हैं। कुछ लोग भविष्य की ऐसी घटनाओं की चिंता करते हैं जो शायद कभी हो ही नहीं। इस तरह श्रोता साथियों, हमारा मन वर्तमान से दूर होकर कल्पनाओं और आकांक्षाओं में भटकने लगता है। आपने भी श्रोता साथियों कभी महसूस किया हो तो सोचिएगा कि अक्सर हम कुछ ऐसी ऐसी बातों को लेकर चिंता करते हैं जो असल में चिंता करने लायक होती ही नहीं है। और जब हम इन सारी चीजों को लेकर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और उन चीजों को सोचते रहते हैं तो हमारी जो चिंता है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और इसी तरीके से आज हम एक चीज को लेकर सोच रहे हैं तो कल दूसरी चीज को लेकर सोचेंगे और ये हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। और जब ये हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है तो ज्यादा सोचने के जो नुकसान होते हैं वो हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्यादा सोचने के जो नुकसान है वो हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। यानी कि दोस्तों, जब हम लगातार किसी बात में उलझे रहते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, नींद प्रभावित होती है, मन हमेशा बेचैन रहने लगता है और खुशी कम हो जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति का काम से ज्यादा अपनी चिंताओं में व्यस्त रहना जरूरी हो जाता है उसके लिए। इसलिए किसी ने कहा है कि कई बार थकान शरीर से नहीं लगातार चलती सोच से पैदा होती है। तो दोस्तों, आपको मैं कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा सोचने की जो आदत है वो हमारे साथ साथ हमारे घर परिवार के सदस्यों पर भी असर करती है। इसलिए इस समस्या को समय रहते पहचान कर खुद को उससे दूर रखने की जरूरत है। इस समस्या का हल क्या हो सकता है ये कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको अवश्य बताऊंगी, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, यहीं अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि क्या सोच से समस्या का हल होता है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सोचना और समाधान ढूंढना दोनों अलग अलग बात है, लेकिन एक ही बात को बार बार दोहराते रहना समस्या का समाधान नहीं है। मान लीजिए कि किसी किसान की फसल खराब हो गई, अगर वह केवल यही सोचता रहे कि नुकसान क्यों हुआ तो उसकी स्थिति कभी नहीं बदलेगी, लेकिन वह यह सोचे कि अगली बार क्या सुधार किया जा सकता है और किसी व्यक्ति से परामर्श ले तो उसकी सोच उपयोगी बन सकती है। यानी कि श्रोता साथियों, इस बात से हमें साफ पता चलता है कि सोच तब लाभदायक है जब तक वह हमें कार्य की ओर ले जाए, और जब सोच हमें केवल चिंता की ओर ले जाती है तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है। देखते हैं ना श्रोता साथियों कि अक्सर हम अपने मन को आराम नहीं देते। जैसे शरीर को विश्राम चाहिए होता है, वैसे ही मन को भी चाहिए होता है, लेकिन हम लगातार हर किसी से तुलना करते रहते हैं, भविष्य की चिंता करते रहते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बीती बातों को याद करते करते अपने मन की चिंता को बढ़ा देते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि हमारा जो मन है वो हमेशा ऐसी बातों को लेकर चिंता में रहता है जो चिंता करने लायक ही नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, हर रास्ता पहले नजर

पर मैं साफ नहीं दिखता। कुछ बातें समय को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि हर गांठ सोच से नहीं धैर्य से खुलती है। इसलिए श्रोता साथियों, आज के समय में ज्यादा सोचने का एक बड़ा कारण तुलना भी है। हम दूसरों की सफलता को देखते हुए बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं कि मैं क्यों पीछे हूँ, मेरे पास वह क्यों नहीं है, मैं उतना अच्छा क्यों नहीं हूँ। तो श्रोता साथियों, यही जो तुलना की चीजें हैं, वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी की खुशियों को छीन लेती है। कहना चाहूंगी कार्यक्रम के माध्यम से कि हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ, क्षमताएं और यात्रा अलग होती है, इसलिए हमें कभी भी हमारी तुलना किसी और व्यक्ति से नहीं करनी है। हम हमारी कहानी खुद लिख सकते हैं, पर हमारी कहानी किसी और व्यक्ति की कहानी से मेल नहीं खा सकती। इसलिए हमेशा अधिक सोचने की जो चीजें हैं, उसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। सोचना है तो उसका समाधान ढूंढें। उस समस्या के समाधान के साथ आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपकी जिंदगी को बदल देंगी। यही बात आती है दोस्तों कि क्या अधिक सोचने वाले लोग कमजोर होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अधिक सोचने वाले लोग अक्सर संवेदनशील और जिम्मेदार होते हैं। वे हर बात को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब संवेदनशीलता चिंता में बदल जाती है। इसलिए जरूरत सोच को खत्म करने की नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देने की है। इसलिए हमें हमारी जिंदगी को थोड़ा सा सरल बनाना है। इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें हर बात का जवाब आज नहीं मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमें कभी नहीं मिलेगा। वो हमें अवश्य मिलेगा, उसके लिए हमें धैर्य को बनाए रखना है। हर योजना पूरी तरीके से सफल हो, ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सी बार कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को लेकर योजना बना रहा है और उसकी योजना में वो सफल नहीं होता है, तो अगली बार से वो योजना बनाना ही बंद कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमारे जीवन में एक योजना से सफलता नहीं मिल रही है, तो हमें उस प्रयास को निरंतर जारी रखना है। एक वक्त ऐसा आएगा जब हम हमारी योजना को सफल बना पाएंगे। हमें हर व्यक्ति की चीजों को समझना है। कुछ चीजें अनिश्चित होती हैं जीवन में, उनको भी हमें स्वीकार करने की जरूरत है। कहते हैं ना कि जिंदगी को समझने की कोशिश अच्छी है, लेकिन जिंदगी को जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने मन को शांत रखने की चीजों के बारे में सोचिए। इसके लिए आप कुछ छोटे छोटे उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि आप अपनी चिंता को डायरी में लिख लीजिए, या अपने ऐसे किसी व्यक्ति से साझा कीजिए जिस पर आप भरोसा करते हैं। इसी के साथ जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उन सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। हर समस्या का हल तुरंत खोजने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। परिवार और मित्रों से बातचीत कीजिए। अपने शौक और रुचियों के लिए समय निकालिए, क्योंकि यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिससे हम अपने मन को खुश रख सकते हैं, और वर्तमान के क्षण को जीने की आदत डालिए। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से कार्यक्रम में हम जान पाए कि ज्यादा सोचना किस तरीके से हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। यही आपको अंत में कहना चाहूंगी कि सोचना हमारी शक्ति है, लेकिन वही शक्ति जब कमजोरी बन जाती है दोस्तों, तब वह हमें वर्तमान से दूर कर देती है। जीवन की हर समस्या का समाधान केवल सोचने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने से आता है। हमें यह समझना होगा कि हर बात हमारे नियंत्रण में हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ प्रयास और कुछ ऐसी चीजें जो जीवन में बदलने जरूरी है, उनके माध्यम से हम हमारे जीवन को बदल सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मन को हर समय सवालों का घर मत बनाइए, कुछ खिड़कियाँ उम्मीद के लिए खुली रखिए। जिंदगी केवल सोचने के लिए नहीं मिली है, यह हमें महसूस करने, सीखने और जीने के लिए मिली है। तो अपनी जिंदगी का आनंद लीजिए और अपने मन को शांत रखिए। आशा करती हूँ कि कार्यक्रम में जो बातचीत रही है, वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में मेरी आपसे जो बातचीत रही है, जो गीत संगीत रहे हैं, वो आपको अवश्य पसंद आए होंगे। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबोने पूछे है जमीमाते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आयत की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मालूम में जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लगाड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ ने अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लगाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित